ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सबाब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई

0: मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है श्री रामचरित मानस का। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का भाग 5।

देवताओं, संतों और दुष्टों वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपनी अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार।

पेड़ हमेशा फल आने पर ही झुकता है, वैसे ही महान इंसान विनम्र होता है। याद रखिए, विनम्रता इंसान की सबसे सुंदर पहचान है। जो जितना ऊंचा उठता है उसे उतना ही सरल और शांत रहना चाहिए। अहंकार इंसान को लोगों से दूर कर देता है, लेकिन विनम्रता दिलों में हमेशा के लिए एक जगह बना देती है। इस सुविचार के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदन की ये आखिरी भक्ति संगीत रचना।
1: जय भोलेनाथ। भगवान शिव आदिदेव महादेव हैं। कैलाशपति शिव जी का पावन नाम लेकर अनगिनत भक्त भवसागर से पार उतर गए हैं। शिव भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भक्त की विनती सुनते ही उनके कष्ट दूर करने के लिए भगवान शिव अपनी करुणा के द्वार खोल देते हैं। संसार का बड़े से बड़ा संकट एक शिव का नाम लेने मात्र से दूर हो जाता है। तो आइए हम भी सुबह सुबह शिव का नाम लें।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदन। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुना रहे हैं फिल्म धुरंधर द रेवेंट से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत।

लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म द ट्रेन से। ये सईद कादरी के लिखे इस गीत को गाया है केके ने और अपनी धुन से सजाया है मिथुन ने।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर।
2: बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है 21।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 7 बजे है, प्रस्तुत है कुछ बातें कुछ गीत।

आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। कहते हैं कि हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक वो जो दुनिया देखती है जहां मुस्कानें होती है, काम होता है और सब कुछ सामान्य सा दिखाई देता है, और दूसरी वो जो सिर्फ वो खुद जानता है। जहां डर होता है, उलझने होती है और कुछ अधूरी बातें जो कभी वह किसी से नहीं कह पाता। कभी हम बहुत खुश तो दिखते हैं लेकिन अंदर से थके हुए से होते हैं। कभी हम चुप रहते हैं लेकिन मन में बहुत सा शोर होता है। शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसी कहानी चल रही है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह नहीं जान पाएगी। हर सुबह हम एक तरीके से चेहरा पहनकर निकलते हैं। लोग पूछते हैं हमें, सब ठीक है ना? और हम मुस्कुराकर कह देते हैं, हाँ सब बढ़िया, मुझे क्या ही होगा। हकीकत तो यह है कि दुनिया हमारी उपलब्धियां देखती है, हमारी तस्वीरें देखती है और हमारी हंसी वह सुनती है, लेकिन कोई नहीं देख पाता वह थकान जो हम अंदर छुपाए रखते हैं। शायद हम सब ने कहीं ना कहीं खुद को मजबूत दिखाने की एक आदत सी बना ली है। हम खुद को मजबूत दिखाते हैं और साथ साथ कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुरा देते हैं ताकि सामने वाला हमारे दर्द को ना पढ़ पाए, और धीरे धीरे ये मुस्कान हमारी एक आदत सी बन जाती है।

हर इंसान के अंदर एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ वह अकेला होता है, वहाँ कुछ अधूरे सपने होते हैं, कुछ डर, कुछ बातें जो वह किसी से नहीं कह पाता है। कभी रात को सब सो जाते हैं लेकिन हमारा मन अब भी जाग रहा होता है, और शायद यही वो पल होते हैं जब हम सच में खुद से मिलते हैं। उसी खामोशी में हम अपने सबसे सच्चे सवालों से मिलते हैं, और शायद हर इंसान की सबसे लंबी बातचीत ही अपने ही मन से होती है।

हर मुस्कुराता चेहरा हमेशा खुश हो ये जरूरी नहीं। कई लोग दूसरों को हंसाते हंसाते खुद अंदर से टूट रहे होते हैं। कुछ लोग अपना दर्द शब्दों में नहीं खामोशी में छुपाते हैं, और शायद इसीलिए हमें लोगों को सिर्फ देखना नहीं समझना भी चाहिए। कभी कभी एक तुम ठीक हो ना सच में किसी का दिन बदल सकता है, क्योंकि हर दिल थोड़ा समझ और थोड़ा सा अपनापन चाहता है।

शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल काम दूसरों को समझना नहीं, खुद को समझना है। हम क्या चाहते हैं और क्या सच में हमें खुश करता है। जब इंसान अपनी दोनों जिंदगी को स्वीकार कर लेता है, तब वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है और शायद उसी दिन वह सच में जीना भी शुरू करता है, क्योंकि खुद से भागकर कहीं सुकून नहीं मिलता। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया भी थोड़ी आसान लगने लगती है।

हर इंसान अपने अंदर एक पूरी दुनिया लिए चलता है। कुछ बातें वो दुनिया से कह देता है और कुछ खुद तक ही रखता है। खुद को भी थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सुनिए और थोड़ा समझिए, क्योंकि जो जिंदगी अंदर चल रही है उसे समझना भी उतना ही जरूरी है जितनी बाहर की दुनिया को। आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सवेरे के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार व उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
5: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं।

0: में भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी।

0: लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ यह उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नव भारत टाइम्स अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने

हंसते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए, हर ओर सुंदर मुस्कान का प्रभास करिए, खुशियों से खिल उठती है जिंदगी हमेशा, इसलिए सदा खुश रहने का प्रयास करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार।

हैं श्रोताओं, सुबह की चाय किसे नहीं पसंद, लेकिन अगर जीवन की चाय आप पीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अहम को उबालिए, अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए और फिर अपनी गलतियों को छान लीजिए। अब बस चुस्कियां लीजिए, खुशियों का स्वाद लीजिए और पीजिए जीवन की चाय। जी हाँ, सुप्रभात, आपका अभिनंदन आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।

दोस्तों, हर दिन एक नई सुबह नई ऊर्जा लेकर आता है और ऐसी ही ऊर्जा आप सभी में भरने के लिए हम हाजिर हैं आप सभी का पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार लेके, जिसे लेकर आई है हमारी साथ हमारी टेक्निकल टीम। तो सबसे पहले करवाते हैं आपसे हमारी क्रिएटिव टीम का परिचय।

0: से कंट्रोलिंग कर रहे हैं चंद्राराम पटेल। कंसोल पर अनाउंसर ऑन ड्यूटी FHPT पर है शुभम। और FM पर उद्घोषिका साक्षी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है संजय व्यास। और कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने। और इस कार्यक्रम में हम दो साथी, मैं मीता मुल्तानी
1: और मैं सीमा शर्मा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मीता जी, हम सभी के जीवन में अलग अलग तरह का संघर्ष होता है, अलग अलग तरह की कठिनाइयां जो हैं वो बनी रहती हैं।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन कई बार ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर हम अपने जीवन में उसे प्रेरणादायक मान लेते हैं या उन बातों से प्रेरणा ले लेते हैं।
3: बिल्कुल सीमा जी।
2: तो ऐसी ही एक छोटी सी बात है जो अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे हो सकता है कि जिनके जीवन में अभी कुछ परेशानियों का दौर जो है वो चल रहा है या कुछ स्ट्रगल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन का काम उनके जीवन में करती है। तो श्रोताओं, गांव में एक बहुत बुजुर्ग मछुआरा था और वो जो था वो बुजुर्ग होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करता था और हमेशा अपनी कड़ी मेहनत और अपने समर्पण के लिए जाना जाता था। हर सुबह जब तक सूर्य निकलते थे, सूर्यदेव उससे पहले उठता और अपने पुरानी नाव पर निकल जाता था सागर में, दूर दूर, बहुत दूर। और उसका ये मानना था कि जुनून और मेहनत जो है वो हमें हर मुश्किल पार करवा सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक दिन था और उस दिन ये जो मछुआरा था समुद्र में मछलियां पकड़ने चला गया। श्रोताओं, अब आप तो जानते ही हैं कि मौसम जो होता है अचानक से बदल भी जाता है। तो बिल्कुल अचानक तेज तूफान आया और उसकी नाव जो थी उछलने लगी। अब उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने, श्रोताओं, हार मानने की बजाय अपने संघर्ष से लहरों का सामना करने का फैसला किया, क्योंकि दिल में ये बात थी कि भाई अगर संघर्ष भी नहीं करूंगा तो भी मुझे डूबना है। हाँ। लेकिन संघर्ष करके मैं अपने आप को बचाने की एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। तो बिल्कुल उसने अपनी नाव को नियंत्रण में रखते हुए तूफान के खत्म होने की प्रतीक्षा की। बहुत से मछुआरे जो किनारे पे थे मीता जी, वो सोच रहे थे कि ये जो मछुआरा उसमें समुद्र में गया है, इसने तो अपनी हार मान ली होगी और अब हमें शायद वो कभी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तूफान शांत हुआ और दूर से एक नाव चली आ रही है, उसमें उसे सुरक्षित लौटते देखा, तो सभी ने, जो कहते ना कि दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि इतना भयंकर तूफान था, उसमें से अगर कोई सुरक्षित लौटता है तो बहुत बड़ी बात है। तो श्रोताओं, सभी ने उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की प्रशंसा की, साथ ही साथ खुद के जीवन में भी, कहते ना, एक अपने आप से ये वादा भी किया कि कभी भी अगर हमारे जीवन में भी कोई कठिनाई या कोई तकलीफ आती है, कोई संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो हम उस परेशानी को पूरी तरीके से अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि खुद को, कहते ना, प्रोत्साहित करके और उस परेशानी को पार कर लेंगे। तो बिल्कुल यही बात है कि अगर हम हार मान लेते हैं तो हमारी हार होने से पहले हमारी हार हो जाती है, लेकिन अगर जीत का जज्बा दिल में रखते हैं तो फिर जो नई, कहते ना, सक्सेस पॉइंट्स हैं वो हमारा इंतजार करते हैं।
3: बिल्कुल, तभी तो कहते हैं ना सीमा जी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।

0: मीता जी, आज है 24 मई, और जो 24 मई है, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं आज के दिन में दर्ज हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के जन्म और ऐतिहासिक उपलब्धियां जो हैं वो भी आज की तारीख में दर्ज हैं। और इस दिन भारत और विश्व में राजनीति, विज्ञान, खेल, कला जगत से जुड़ी कई यादगार घटनाएं जो हैं वो घटी हैं, और आप समझ गए हैं कि अब हम किस ओर अपना रुख करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सीमा जी, तो हम आज श्रोताओं को रूबरू करवा रहे हैं 24 मई के दिन के इतिहास के बारे में।
0: बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं 24 मई 1543 में श्रोताओं, जहां पोलैंड के महान खगोल शास्त्री जो थे निकोलस कोपरनिकस, उनका निधन हुआ था। उन्होंने सूर्य केंद्रित सौरमंडल का सिद्धांत दिया था। और वहीं क्या आप जानते हैं कि 24 मई 1819 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था। उनके शासनकाल को विक्टोरियन युग कहा जाता है श्रोताओं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, और इसी तरह 1844 वर्ष में आज ही के दिन टेलीग्राफ के आविष्कारक सैमुअल मॉर्स ने वॉशिंगटन से बाल्टीमोर के बीच दुनिया का पहला सफल टेलीग्राफ संदेश भेजा था मित्रों। साथ ही वर्ष

0: 1883 और दिन था आज का यानी 24 मई। न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन को जोड़ने वाला प्रसिद्ध ब्रुकलिन ब्रिज 14 वर्षों के निर्माण के बाद जनता के लिए खोला गया था।
1: और क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1956 में स्विट्जरलैंड के लुगानो शहर में पहला यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया था, और 1976 की अगर हम बात करें तो 24 मई में प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा के नाम पर भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था।
0: साथ ही मित्रों, वर्ष 1920 में देश में मुस्लिम शिक्षा का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र माने जाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 24 मई यानी आज ही के दिन हुई थी। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की जरूरत को महसूस करते हुए 1877 में एक स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। यही कॉलेज आगे जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। आजादी के बाद देश के चार प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से यह प्रमुख था। साथ ही वर्ष 1930 में एमी जॉनसन इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक अकेले उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। बातें और भी होंगी, पहले सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: जय श्रोताओं, सूर्य की तपिश का अग्नि पर्व नौतपा। आपको बताएं कि इस वर्ष नौतपा शुरू होगा 25 मई से और 2 जून तक रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इन 9 दिनों में भीषण गर्मी, तेज लू और तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और नौतपा क्यों माना जाता है विशेष, अगर इसकी हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौतपा वर्ष के सबसे अधिक गर्म और प्रभावशाली दिनों में गिना जाता है। श्रोताओं, ऐसी मान्यता है कि इस दौरान सूर्य का अग्नि तत्व जो होता है वो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और सूर्य की किरणें अधिक प्रखर होकर पृथ्वी पर पड़ती हैं। इसी कारण तापमान तेजी से बढ़ता है और भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिलता है। लोक मान्यता ये भी है कि यदि नौतपा के सभी दिन अच्छी तरह तपें तो आगे चलकर अच्छी बारिश होने की संभावना बढ़ती है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, तो कल से नौतपा शुरू होने जा रहा है, लेकिन हमें इस नौतपा में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इस बारे में हम अब बात करते हैं। तो इस समय दोपहर में अनावश्यक यात्रा से बचें, धूप में बिना सिर ढके बाहर न निकलें, शरीर में पानी की कमी न होने दें, अत्यधिक गर्म और तले हुए भोजन से परहेज करें, बच्चों और बुजुर्गों को विशेषकर तेज धूप से बचाकर रखें। साथ ही इस नौतपा के दौरान पौधारोपण और जलदान को बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। श्रोताओं, मान्यता है कि इससे सूर्य से संबंधित अशुभ प्रभाव कम होते हैं। प्यासे लोगों को जल पिलाना, जल से भरा पात्र दान करना और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार नौतपा को मानसून का गर्भकाल भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की तीव्र गर्मी और रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से मानसून की परिस्थितियां बनती है। कहा जाता है कि इन दिनों महिलाएं हाथ पैरों में मेहंदी लगाती है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। तो आप भी नौतपा में अपना परहेज जरूर करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती को लेकर सभी सरकारी विभागों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनमें सरकारी खर्चों में कमी लाने, डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित करने, राजकीय खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी तय किया गया है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई व्हीकल्स में बदला जाएगा। संविदा वाहनों में भी ई व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्यभर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा एक ही दिशा में आने जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पोलिंग अपनाने और तात्कालिक रूप से निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया है। ये खर्च नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। श्री वैष्णव कल जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भिवाड़ी में खुले प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस क्लस्टर के जरिए अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी इलाके को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना का स्वागत किया है। श्री शेखावत कल बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी तरह की घुसपैठ की आशंका समाप्त हो जाएगी।
1: आने वाले 3 वर्षों में भारत की सीमाएं अभेद्य हो जाएंगे। हम भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए सभी उन्नत टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए, जहां सीमा पर सीमा की तारबंदी को और अधिक सुदृढ़ करना है उसे सुदृढ़ करते हुए भारत की सीमाएं अभेद्य बने और भारत में एक भी व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में प्रवेश न कर सके, इसको सुनिश्चित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना प्रारंभ किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर से, हमारे राजस्थान से, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं उसकी 1/3 से ज्यादा सीमा जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान के बॉर्डर पर उनका आना राजस्थान की सीमा की सुरक्षा के लिए और राजस्थान की सीमा के बदलते हुए परिदृश्य में भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
0: श्री शेखावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया। श्री शाह का कल रात बीकानेर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 26 मई को सांचू बॉर्डर चौकी का निरीक्षण कर जवानों से संवाद करेंगे। वे सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों

श्रोताओं, 9 बजने वाले हैं और आपको पता है कि इस वक्त वक्त होता है न्यूज ब्रेक का। तो यहाँ हम रुकेंगे एक न्यूज ब्रेक के लिए और फिर मिलेंगे आपसे 9:10 पर।

0: के साथ बैठक भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। श्री खर्रा कल अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का काम है।
1: हम तो तैयार हैं, राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग जब भी उचित समझेगा और सरकार से उनको जो मदद की आवश्यकता होगी, सरकार वो मदद देने को तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव की तैयारी करे।
0: गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और टाले नहीं जा सकते। अदालत ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा तय की है। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन तथा मतदाता पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्कर घाटी में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी के दोनों तरफ हाइट गेज लगाने और बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने को कहा। श्री देवनानी ने कहा कि पुष्कर लोगों की आस्था का प्रमुख केन्द्र है, यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में घाटी क्षेत्र में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। श्री सिंह ने कल महाराष्ट्र के सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा।
2: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट more than 5,000 items की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और हल्की बरसात हुई। वहीं जैसलमेर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया। 44 डिग्री पारे के साथ पिलानी, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म हवाओं का प्रकोप अधिक है। सरहदी जिलों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक हीटवेव की प्रबल संभावना है। पश्चिमी जिलों में तेज लू और पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में हीटवेव के साथ गर्म रातों का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच कल से नौतपा शुरू हो रहा है, ये 2 जून तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सूरज सबसे ज्यादा तपिश पृथ्वी पर डालता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की

0: सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार में।
2: कॉमनवेल्थ डे यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस। जी हां श्रोताओं, भारत सहित दुनिया के कई देशों में हर साल 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का प्रचलन शुरू हुआ था। 24 मई 1819 को महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। श्रोताओं, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य उन सभी देशों के बीच एकता की भावना को मजबूत करना है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इस दिन को मनाने का मकसद एकता और मानवता को स्थापित करना है ताकि राष्ट्रमंडल देशों में स्वतंत्रता की भावना का विकास हो। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद पहली बार साल 1902 में साम्राज्य दिवस यानी कि एम्पायर डे आयोजित किया गया। साल 1958 में हेरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया था। फिर जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य से देश आजाद होते गए, उन्होंने इस दिवस को मनाना शुरू कर दिया। श्रोताओं, विश्व के कई देशों में जब ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हुआ तो इन आजाद देशों को एकजुट रखने के लिए राष्ट्रमंडल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इन देशों ने मानवता का संकल्प लेकर राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने की शुरुआत की। भारत राष्ट्रमंडल दिवस को मानवता और शांति के संदेश को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाता है। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रमंडल देश हैं वो इस दिन को सामाजिक न्याय, सहनशीलता और स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों को याद करना जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया।
1: श्रोताओं, साथ ही आज हम मना रहे हैं विश्व मारखोर दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द मारखोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस ऐतिहासिक प्रजाति और इसकी लुप्त प्राय स्थिति के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर 24 मई को इस दिवस की शुरुआत की थी। मारखोर दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी है जो अपने आकर्षक सर्पिल और घुमावदार सींगों के लिए जानी जाती है। मित्रों, यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण एशिया के ऊंचे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों जैसे अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और तजाकिस्तान में पाई जाती है। भारत में यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है, तो हम भी इसके संरक्षण के लिए जागरूक बनें।

श्रोताओं, अभी गर्मियां चल रही है और गर्मी में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम काम की बात में आपको बताते हैं कि हमारे लिए गर्मियों में सबसे अच्छा पेय पदार्थ क्या है, और वो है, सोचा आपने, बिल्कुल सही पहचाना, वो है कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी। मित्रों, आपने कभी ये सोचा कि नारियल के अंदर पानी कैसे पहुंचा? ये समझने से पहले हमें नारियल की संरचना को जानना होगा। नारियल में कुल तीन परतें हैं, एस्कोकॉर्प, मेसोकॉर्प और एंडोकॉर्प। एस्कोकॉर्प नारियल का बाहरी हिस्सा है जो कठोर होता है। मेसोकॉर्प में रेशेदार भूसा होता है। वही एंडोकॉर्प आंतरिक परत है जो नारियल के सफेद गूदे की रक्षा करती है। एंडोकॉर्प के अंदर दो मुख्य चीजें हैं, गूदा नारियल में नरम और जेली जैसा होता है। पूरी तरह तैयार होने पर वो कठोर हो जाता है। नारियल का पानी गुहा यानी कैविटी में भरता है। यह पानी एक पौष्टिक फ्लूड है।

0: जो बीज के विकास को पोषण देता है और ये नारियल के विकास के दौरान स्वाभाविक रूप से बनता है। नारियल पानी उसके पेड़ की जड़ों से एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होकर पेड़ के वेस्कुलर सिस्टम से नारियल के अंदर पहुंचता है और यह 95% पानी और केवल 5% पोषक तत्वों से युक्त होता है। ये जो 5% हिस्सा है उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है जो नर्व यानी तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को पोषण देते हैं। साथ ही मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये नारियल जो है इसमें पानी कैसे पहुंचता है, तो अब हम आपको बताते हैं कि नारियल में पानी कैसे पहुंचता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप जो ये सोच रहे हैं कि नारियल में पानी कैसे पहुंचता है, ये ना बारिश का पानी होता है और ना ही समुद्र का, तो फिर क्या कोई जादू होता है? अंदर कोई जादूगर बैठा है जिसने पानी का नल चला दिया और नारियल के अंदर पानी भर दिया? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। सीधी सी बात ये होती है श्रोताओं कि ये एक फिल्टर्ड रस की तरह है जो नारियल के पेड़ों की जड़ों से एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित होकर के, जैसा कि अभी मीता जी ने बताया कि वेस्कुलर सिस्टम में पहुंचता है श्रोताओं, और यहाँ पर जाइलम टिश्यूज के माध्यम से ऊपर नारियल तक पहुंचता है। नारियल का पेड़ जो है वो अपनी व्यापक जड़ प्रणाली के माध्यम से मिट्टी से ग्राउंड वाटर और उसमें घुले पोषक तत्वों को कर लेता है एब्जॉर्ब, और ये पानी पेड़ के तने और शाखाओं के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है और पहुंच जाता है अंत में फल तक, और वो हमें मिल जाता है नारियल पानी के रूप में, जिसे आप हम सब बहुत एंजॉय करते हैं।

0: श्रोताओं, आज है 24 मई और 24 मई के दिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी ताकत से अपना नाम अमर कर दिया। उसमें सबसे पहले हम याद करते हैं महान पर्वतारोही बछेंद्री पाल को। बछेंद्री पाल ने उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी की पहाड़ों की गोद में 24 मई साल 1954 में जन्म लिया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय और दुनिया की पांचवी महिला है। मित्रों, चौरासी के अभियान में शामिल होकर बछेंद्री पाल ने सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर विजय पाई और भारत की महिलाओं को पर्वतारोहण के क्षेत्र में ला खड़ा किया।
1: जी श्रोताओं, पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल, अगर हम इनकी बात करें तो ऐसी प्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त की, उनका स्थान विश्व में पांचवा है। श्रोताओं, साथ ही साथ इन्होंने न केवल महिलाओं के पर्वतारोही दल का एवरेस्ट अभियान में नेतृत्व किया बल्कि 1994 में बछेंद्री पाल ने गंगा राफ्टिंग भी की। ये राफ्टिंग उन्होंने हरिद्वार से कलकत्ता तक महिला दल का नेतृत्व करते हुए की थी। 1997 में बछेंद्री पाल ने केवल महिला दल का नेतृत्व करते हुए हिमालय पर्वतारोहण भी किया था श्रोताओं, और 1990 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हुआ। छियासी में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 1994 में इन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार प्रदान किया गया और श्रोताओं 1997 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें ऑनरेरी डीलिट की डिग्री प्रदान की गई थी। 1997 में ही बछेंद्री पाल को महिला शिरोमणि अवार्ड से भी नवाजा गया था।

जी हाँ श्रोताओं, सूरज भी जैसे मुस्कुरा रहा है साथ में, क्योंकि आज तो बस सुकून ही सुकून है। हर बात में हर पल को आराम से जीने का इशारा कर रहा है। रविवार है, दिल को बहलाने का दिन, खुद से मिलने और मुस्कुराने का दिन, छुट्टी का दिन, सुकून भरा मन जैसे उड़ता पंछी खरा। न जल्दी उठने की कोई चिंता, न कामों की कोई झंझट, रविवार कहता थोड़ा ठहरो, जीवन की रफ्तार से जरा उतरो, अपनों के संग हंसी बांटो और खुद को भी थोड़ा समय दो। जी हां श्रोताओं, आप समझ चुके हैं कि हमारा इशारा अब किस तरफ है। मेहमान का रविवार।

बार प्रोग्राम जिसका रहता है आपको भी बेसब्री से इंतजार। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आज फोन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं मिसेस मोनिका व्यास। आप शिक्षाविद हैं श्रोताओं, 20 सालों से आपने अपने आप को पूरी तरीके से एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उसमें पूरी तरह से डुबा रखा है। स्टूडेंट्स को गाइड करना, उन्हें एकेडमिक एक्सीलेंसी के लिए किस तरीके से वर्कआउट करना है ये बताना, साथ ही साथ हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है, अद्भुत है, और उसकी इस इंडिविजुअल आइडेंटिटी को निखारना ही इनके जीवन का उद्देश्य है। तो हमारे साथ हैं मोनिका व्यास। मोनिका मैम, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम में।

0: जी हाँ, हमने आपको बताया कि हमारे साथ आज फोन के माध्यम से जुड़ी हैं मिसेज मोनिका व्यास, आप शिक्षाविद हैं। मोनिका जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम में।
1: थैंक यू मैम।
0: मोनिका मैम, आपने अपने संडे में हमें जो वक्त दिया है वो सच में अद्भुत है और उसके लिए हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बिना किसी देरी के हमारे श्रोता और हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपना संडे स्पेंड करते हैं, मॉर्निंग से किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी से अलग हो जाती है आपकी सुबह।
1: जैसा कि मैं सभी लेडीज को कहना चाहूंगी, जो भी वर्किंग वुमेन है उनके लिए, कि हम संडे को ही अपने मकान को घर बना पाते हैं शायद फैमिली के साथ में।
0: बिल्कुल सही।
1: शायद वही वो दिन होता है जिस दिन हम फैमिली के साथ में स्पेंड करते हैं। और कुछ हद तक मैं ये भी कहूंगी कि शायद हम भगवान से भी शायद उसी दिन ज्यादा जुड़ पाते हैं, क्योंकि कर्म तो हम 6 days करते हैं, लेकिन एक दिन हमें मिलता है जब मैं धर्म भी कर पाऊँ, अपना धर्म निभा पाऊँ, अपने धर्म के बारे में जान पाऊँ और कुछ सीख पाऊँ। संडे मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे संडे का जो मेरा रूटीन रहता है वो सब इन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि मेरा हर दिन बच्चों के साथ में भी मैं अपना बचपन जीती हूँ, लेकिन इस दिन मैं अपने बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में अपना पूरा दिन स्पेंड करती हूँ, अपने मेहमानों का स्वागत करती हूँ और कुल मिला के मैं अपनी जिंदगी को एक बार फिर से जीती हूँ।
0: मतलब आपकी जो आवाज है उससे बिल्कुल लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड होती हैं अपने संडे को लेकर। हेलो
1: हेलो
0: जी, मैंने कहा कि आप बहुत एक्साइटेड होती हैं अपनी संडे को लेकर।
1: जी बिल्कुल, मैं संडे का इंतजार करती हूँ।
0: तो बताइए, सुबह की शुरुआत चाय के साथ होती है या फिर कुछ देर आराम के साथ होती है, किस तरह से आपकी सुबह निकलती है?
1: जी, सुबह की शुरुआत थोड़ा सा देर से उठने से होती है, जैसे कि एवरीडे मैं 4:30 उठ जाती हूँ, लेकिन संडे के दिन मैं 5:30 तक उठती हूँ और उसके चाय के साथ से मेरी शुरुआत होती है
0: जी।
1: उसके बाद में मैं डेली रूटीन का अपना वर्क करके पूजा पाठ करती हूँ।
0: तो जो चाय होती है, बिल्कुल आपको यहाँ रोकूंगी मोनिका जी, जो चाय होती है वो आप खुद बनाती हैं या फिर उस दिन आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं?
1: जी, मेरे हस्बैंड चाय बनाते हैं।
0: नहीं, मतलब इस बात को शेयर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संडे जो होता है ना, ये फैमिली टाइम।
1: मुझे बहुत प्राउड है
0: जी, जी, जी।
1: कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए बहुत सोचते हैं
0: जी,
1: उससे कहीं ज्यादा जितना मैं सोचती हूँ।
0: मैम, यही प्यार होता है, यही बॉन्ड होता है जो हमारी फैमिली को हमारे साथ जोड़े रखता है।
1: बिल्कुल
0: जी मैम। अब चाय पीने के बाद में फिर आप जो अपना डेली रूटीन है उसके बाद में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या आपका रहता है।
1: पूजा पाठ करने के बाद में मैम मैं अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, उनकी डेली रूटीन, उनकी सारी बातें सुनती हूँ और इसके साथ में ही हमने अपने घर में स्पीकर लगा रखा है, उसमें मैं एवरी डे जब भी अपना रूटीन वर्क करती हूँ तो अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनती हूँ। मेरे हस्बैंड की पसंद के सॉन्ग एक जैसे ही हैं,
0: अच्छा,
1: तो मैं वही सॉन्ग सुनती हूँ जो हम दोनों को पसंद है। हम गुनगुनाते हैं और काम करते हैं घर का।
0: क्या बात है, मतलब मैं इमेजिन कर पा रही हूँ जो आपकी फैमिली की जो संडे होता है किस तरीके से सिचुएशंस जो हैं वो आगे बढ़ती जा रही है। मैं भी इमेजिन कर रही हूँ और मेरे श्रोता जो हैं उन्हें भी ये सब चीजें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं और वो भी इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बहुत ही प्यार भरा माहौल जो है घर में देखने को मिलता होगा। मैम, फैमिली के बाद में नंबर आता है उन खास दोस्तों का जिन्हें हम शामिल करते हैं हमारे संडे में, तो क्या कुछ ऐसा आपके संडे में भी होता है?
1: कहूंगी, पहले तो माफी मांगना चाहूंगी अपने सभी दोस्तों से जिनको मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ शायद,
0: जी जी,
1: या मैं बहुत आगे निकल आई हूँ, दोनों ही कह सकती हूँ कि मैं उन दोस्तों से नहीं मिल पाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार मेरा फोन पे बात होता है उनसे, लेकिन मिल नहीं पाती हूँ
0: जी।
1: लेकिन मैं अपना बचपन जरूर जीती हूँ मैम उन 6 दिनों में जब मैं अपने स्कूल में होती हूँ, जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ।

0: अपना बचपन मैं उन्हीं के साथ जीती हूँ और अपने उन सभी फ्रेंड्स को याद करती हूँ और जो गीत हम साथ में गुनगुनाते थे वो सभी गीत मैं अपने स्पीकर में सुनती हूँ संडे को।
1: मतलब ये याद करने का बिल्कुल सही आपने कहा कि जो गीत होते हैं ना वो एक दूसरे को याद करने का बहुत ही बढ़िया जरिया होते हैं। जो भी इंसिडेंट्स उस गीत से जुड़े होते हैं जब भी हम वो गीत फिर से सुनते हैं तो वो सब बातें याद आती हैं, वो सब लोग याद आने लग जाते हैं। जी मैम, वैसे तो देखिए शिक्षा जो है आप इस क्षेत्र में 20 वर्षों से हैं और बच्चों के लिए आप कार्य कर ही रहे हैं तो एक तरीके की ये भी सोशल एक्टिविटी है, लेकिन क्या कुछ और भी इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट रहता है?
0: जी इंटरेस्ट रहता है, ज्यादा तो नहीं जा पाती लेकिन हाँ कभी कभार हम कहीं जैसे वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम कुछ इस तरह की जगहों पर जाते हैं, बच्चों का बर्थडे होता है तो वहीं पे सेलिब्रेशन करते हैं।
1: जी जी
0: लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, एक साल में 2 या 3 बार ही हम जा पाते हैं।
1: अच्छा।
0: और इस तरह से वो भी इसीलिए क्योंकि ये मेरा और मेरी फैमिली का, मैंने अपनी फैमिली से यही सीखा, मेरे पेरेंट्स से मैंने यही सीखा कि शायद अगर भगवान हमें देने लायक बनाता है तो हमें देना ही चाहिए।
1: बहुत बढ़िया,
0: उसने हमें बनाया इसीलिए है, उसने हमें देने लायक इसीलिए बनाया है ताकि हम दे सकें, उसने हमें एक मीडिएटर बनाया है। मैंने अपने फादर से अपनी मदर से मैंने हमेशा यही सीखा और मुझे यहाँ पर भी सपोर्ट मिला फैमिली में, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ, तो मैं इन सभी के जो भी अच्छे गुणों को मैंने लिया उनके संस्कारों को आगे निभाते हुए इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करती हूँ।
1: बहुत बढ़िया। श्रोताओं आपको बताएं हमारे साथ हैं मिसेज मोनिका व्यास, आप एजुकेशनिस्ट हैं। मैम बात आपने कही कि आपके पेरेंट्स से भी आपको यही संस्कार मिले जिसे आपने कैरी फॉरवर्ड किया, आपने इन लॉज के साथ में भी आपने उन्हीं संस्कारों की पालना की, तो जब बात पेरेंट्स की चल रही है तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल मैम, देना चाहूंगी एज पेरेंट, एज एजुकेटर भी देना चाहूंगी। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपेयर किसी से ना करें, उनकी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि हमारे बच्चे यूनिक है, दुनिया का हर इंसान यूनिक ही है, शायद इसीलिए हम सभी की शक्ल एक जैसी नहीं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चे को यूनिक माने, उसकी हर हार को जीत में बदलने की कोशिश करें। कहते हैं कि डूबते हुए को तैरना नहीं सिखाया जाता, डूबते हुए को बचाया जाता है। अगर कोई डूब रहा है तो हमें उसे उसी समय तैरना नहीं सिखाना है,
1: सही बात,
0: हमें उसको उस समय बचाना है। तो ऐसी अगर फीलिंग हर पेरेंट के मन में आए कि जब भी वो हारता है बच्चा या जब भी अपने जीवन में उदास होता है तो हमें उसके साथ में खड़े होना है, उसको तकलीफ से बाहर निकालना है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना, सोसाइटी क्या कहेगी इसकी परवाह किए बिना, क्योंकि ये वही सोसाइटी है जिसके हिस्से हम हैं, हम ही सोसाइटी हैं, हम ही बदलेंगे, जो बदलना है हमें ही बदलना है, कोई और नहीं आता है बदलने के लिए।
1: बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। जी जी हर बच्चा यूनिक है और उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग ग्रूम करने में
0: हर बच्चे की अलग
1: कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी मैम। मैम वापस से आते हैं घर की तरफ और घर में अब वक्त हो जाता है लंच का और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पलों का जो हम चाहते ना कि एक बार घर में घुस गए तो वापस बाहर नहीं निकले। तो जो लंच होता है, जो डिनर होता है, ये आपकी पसंद का रहता है या आप बच्चों की पसंद का बनाती हैं? क्योंकि ये एक ही दिन है जब सबकी पसंद आपको जाननी है और उसके अनुसार काम भी करना है।
0: मैम इतने साल अपनी फैमिली के साथ रहते रहते हर एक लेडी अपनी पसंद को वही पसंद बना लेती है जो हस्बैंड को पसंद है, अपने बच्चों को पसंद
1: क्या
0: है,
1: बात है क्या
0: क्योंकि
1: बात?
0: हमारे जमाने में ऐसा होता था कि पेरेंट्स हमसे नहीं पूछते थे कि आज क्या बनाना है।
1: जी बिल्कुल।
0: पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से पूछते थे कि क्या बनाना,
1: क्या
0: है?
1: बनाना है।
0: बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके अकॉर्डिंग खाना बनता था, उनके अकॉर्डिंग ही पूरी दिनचर्या चलती थी। तो हम बच्चे उसी के हैबिचुअल हो रखे हैं, हमारी जो जनरेशन है जो लास्ट हम तक की आपकी और मेरी, तो हम अभी भी वही हैं, हमने अपने आप को नहीं बदला, हम अभी भी वही कहते हैं कि जो बच्चे कहते हैं ठीक है,
1: सही है,
0: बच्चों की पसंद का बना लेते हैं मैम और वही खा लेते हैं और वही हमारी पसंद है, क्योंकि बच्चे ने खुश होके खाया है तो हम ऑलरेडी उनको देखकर ही खुश होके और खा ही लेते हैं मैम।
1: जी जी बिल्कुल सही आपने कहा कि उनकी पसंद हमारी पसंद बन जाती है और ये जो पसंद है कहते हैं ना कि पूरे घर के माहौल को बहुत ही पॉजिटिव कर देती है। मैम एक और सवाल दिल में आ रहा है, तो क्या कभी कभी ट्रैवलिंग का भी मूड बनता है पूरी फैमिली का संडेज को?
0: ट्रैवलिंग का बनता है लेकिन कहीं दूर नहीं जाते, जोधपुर में ही जैसे हम कहीं घूम आते हैं और ज्यादातर जैसे बच्चों का जो जुड़ाव है वो फैमिली से है, अपनी बुआ से है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं है।

0: तो उनके जो सिस्टर्स हैं उनके यहाँ पर हम जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं को अपनी ग्रैंड मदर मानता है बच्चा मेरा,
1: जी
0: बहुत अटैच है उन लोगों से। हम जाते हैं, मेरे मायके जाते हैं, मेरे पेरेंट्स जिनसे मैं नहीं मिल पाती हूँ पूरे सप्ताह,
1: जी
0: तो उनसे मिलना होता है, क्योंकि पेरेंट्स से मिलके और इन बड़ों के आशीर्वाद से जो मिलके खुशी होती है वो शायद पूरे पूरे वीक को अच्छी तरह स्पेंड करने के लिए काफी होता है मोटिवेशन
1: जी जी
0: कि
1: जी
0: आप सब कुछ कर सकते हो और आप सही चल रहे हो।
1: जी
0: तो वीक में एक बार ये सुनना बहुत जरूरी होता है कि आप सही
1: आप
0: हो।
1: सही हैं
0: यू आर राइट।
1: बिल्कुल, ये
0: यस
1: भी एक
0: ठीक
1: मोटिवेशन का
0: है
1: काम करता है मैम, और आगे के जो
0: बिल्कुल
1: वीक है उसके लिए हमें एनर्जाइज भी करता है, तो ये तो जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: मैम, एक छोटा सा दिल में बात और आ रही है कि जैसे हम देख रहे हैं कि आपने कहा अभी लास्ट जनरेशन है हम, तो ये जो बच्चों में जो ये बदलाव आ रहा है जिसके कारण हम अपने आप को लास्ट जनरेशन मान रहे हैं इन सभी संस्कारों की, और जो आगे जेन जी
0: जी
1: जेन अल्फा ये जो आ रही हैं, तो इसके क्या रीजंस है? बहुत शॉर्ट में अगर आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या कारण हो जाता है ऐसा।
0: जी जी मैम, रीजन तो बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा रीजन जो है हमारी खुद की पेरेंटिंग है। आज बच्चे को पेरेंट्स के अलावा कोई और कुछ कहता नहीं है, घर
1: बिल्कुल।
0: में दादा दादी है, नाना नानी है, बुआ है, मौसी है या अंकल आंटी है, इन सबसे दूर होता जा रहा है बच्चा। हमने खुद में उनको दूर किया है, बच्चा हुआ नहीं था हमने किया है,
1: सही।
0: और हम इस जनरेशन को लोगों से लड़ने की क्षमता सिखा ही नहीं रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: लोगों से, लोग जो भी कह रहे हैं उनकी बातों को सुनने की क्षमता नहीं सिखा रहे हैं। मैंने गलत वर्ड यूज नहीं लिया,
1: जी
0: लड़ना नॉट लड़ना। बच्चों को ये पूरा समाज, ये जो पूरी हमारी फैमिली है, यही हमें बच्चे को सिखाती है कि तुम्हें दुनिया का सामना कैसे करना है।
1: जी
0: अगर आपने कुछ गलती की है, दादा दादी ने डांटा, मामा मामी ने डांटा, बुआ ने डांटा, किसी ने भी इंटरफेयर किया और आपको टोका, तो उस समय हम जो पेरेंट होते हैं क्या करते हैं, बच्चे को उनसे दूर कर देते हैं।
1: राइट।
0: बच्चे के दिमाग में यह फीलिंग डालते हैं कि आपको इन सबसे दूर रहना है। फाइनल ये होता है कि बच्चा इन सबसे दूर हो
1: दूर
0: जाता है
1: होता
0: और जब
1: है।
0: सडनली वो दुनिया के किसी और कोने में जाता है जॉब करने के लिए, बाहर कहीं जाता है, उस समय
1: एडजस्ट
0: फिर
1: नहीं हो
0: बच्चा पूरी
1: पाता है।
0: तरह से
1: बिल्कुल
0: नर्वस हो जाता है।
1: जी जी
0: जी
1: जी बिल्कुल। तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर सही
0: बहुत बड़ा रोल
1: पेरेंटिंग
0: है,
1: होगी तो बच्चा जो आज हमसे दूर होता जा रहा है वो दूर नहीं होगा।
0: बिल्कुल, और इसी वजह से बच्चा मोबाइल यूज लेता है, टीवी
1: जी
0: देखता है, क्योंकि बच्चा कुछ तो करेगा पूरे दिन,
1: बिल्कुल,
0: उसके भी तो करता नहीं है। जब हमने उसको फैमिली से अलग कर दिया तो
1: तो
0: बच्चा
1: क्या
0: कुछ तो करेगा
1: करेगा
0: ही।
1: जी।
0: बिल्कुल, तो ज्वाइंट फैमिली होना बहुत जरूरी है। अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो
1: बिल्कुल
0: बच्चे को अपने रिश्तेदारों से मिलवाना बहुत जरूरी है,
1: एक दूसरे
0: वो
1: का,
0: जो दो
1: हाँ
0: कड़वी
1: बॉन्ड
0: बात
1: जो
0: बोलते
1: है
0: हैं
1: वो
0: उनको
1: बिल्कुल।
0: सुनना जरूरी है।
1: जी।
0: ये वो
1: मैम
0: प्रिपरेशन है जो
1: बिल्कुल
0: वो आगे के लिए उसकी चल रही है।
1: जी। हम लोग एक बार फिर से आते हैं घर के अंदर, जहां आपने कहा कि आपने स्पीकर्स लगा रखे हैं और म्यूजिक आप सुनते हैं, तो किस तरीके के गीत आपको पसंद हैं?
0: पुराने सॉन्ग हमें बहुत पसंद है, लता जी के सॉन्ग बहुत पसंद है,
1: जी।
0: पुराने सॉन्ग जो मोटिवेशनल सॉन्ग है वो बहुत पसंद
1: आप अपनी पसंद का कोई गीत हमारे श्रोताओं को बताएं जिसे हम भी सुनें और आप भी इंजॉय करें।
0: है। बचपन में मैम मैं जब भी उदास हुआ करती थी या किसी भी
1: जी।
0: काम में मैं सक्सेस नहीं हो पाती थी, तो मेरे फादर साहब अक्सर ये गाना गुनगुनाते थे और मेरे को गाकर मोटिवेट करते थे।
1: जी
0: आज भी मेरे जहन में वो गाना गूंजता है, और जब कभी मैं घर जाती हूँ, अपने पेयर जाती हूँ, तो मेरे पापा से वो गाना मैं जरूर सुनती हूँ।
1: जी,
0: जी
1: तो बिल्कुल
0: गाना है रुक
1: हाँ,
0: जाना नहीं, जी
1: देखिए आपके
0: रुक
1: पापा
0: जाना नहीं।
1: ने जो है आपको गुनगुना के बताया है, तो आप भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा गुनगुना के बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गीत
0: अच्छा
1: सभी को
0: बिल्कुल।
1: मोटिवेट
0: जी
1: करेगा।
0: रुके जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सांग बहार के। रुके
1: क्या बात है जी।
0: ये
1: बिल्कुल
0: गाना मेरे
1: आपके
0: पापा
1: हमारी बात बीच बीच में कट जाती है, लेकिन आपकी फीलिंग्स मैं समझ रही हूँ। आपके पापा का बहुत ही स्पेशल सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो बिल्कुल आपके
0: जी
1: इस
0: बिल्कुल
1: स्पेशल सॉन्ग को और स्पेशल बनाते हैं हमारे श्रोताओं के साथ। आप फोन के माध्यम से हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।

श्रोताओं, 70-80 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन और कल्याण जी आनंद जी जैसी जोड़ियों का बोलबाला था, उस दौर में एक नए संगीतकार ने बॉलीवुड में एंट्री की और अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार राजेश रोशन की, जो पिछले 5 दशकों से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उनका जन्म आज ही के दिन यानी 24 मई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। राजेश रोशन ने कर्ज, कोयला, जूली, करण अर्जुन, पापा कहते हैं, कहो ना प्यार है, क्रिश, काबिल जैसी सैकड़ों फिल्मों में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। फिल्मों में बेहतरीन संगीत देने के लिए उन्हें 2 बार फिल्म फेयर के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही आज हम स्मृति दिवस मना रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का। इनका पूरा नाम असरार उल हसन खान था। इनके लिखे हुए कलाम में जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त क्षमता थी। मजरू की कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों ओर फैली जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब्ज बागों से निकालकर दुनिया के दीगर स्याह सफेद पहलुओं से भी जोड़ा। मजरू सुल्तानपुरी ने काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, बम्बई का बाबू, बात एक रात की, 9-10-11, 16 साल, 3 देवियां आदि महत्वपूर्ण सुपरहिट फिल्मों में अपना योगदान दिया। उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1993 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही वर्ष 1964 में प्रदर्शित फिल्म दोस्ती में उनके रचित गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए वे सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम चुनमुन।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का नमस्कार। दीजिए अनुमति नमस्कार की पूरी टीम को,
1: और स्वीकार कीजिए मीता मुल्तानी और सीमा शर्मा का नमस्कार।

गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आप सभी बताइए, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होकर अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। इस आनंद को और भी भरपूर करने के लिए आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी कामिनी दीदी। आज हम करेंगे ढेर सारी बातें और सुनेंगे मज़ेदार गाने। तो बच्चों, करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस मज़ेदार गीत के साथ।

बच्चों, गर्मी की छुट्टियों का असली मजा तो बच्चों के लिए ही है, क्योंकि हर एक के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है गर्मी की छुट्टियां सुनते। कोई नानी के घर जाने की तैयारी करता है, कोई खेल कूद की, तो कोई नई चीज सीखने की। बच्चों, छुट्टियां सिर्फ बिताने के लिए नहीं, कुछ नया सीखने के लिए भी होती है। आप अपनी दादी, नानी या माँ से छोटे छोटे काम सीख सकते हैं घर पे बैठ के ही, जैसे पेड़ लगाना, ठंडा शरबत बनाना, खाना बनाने में छोटी मोटी मदद करना, पक्षियों के लिए परिंदे लगाना, पेपर क्राफ्ट बनाना, अपना बैग और कमरा व्यवस्थित करना, और भी कई छोटे छोटे काम हैं जो आप घर पर बैठ के आराम से सीख सकते हैं। तो बच्चों, आप भी अपनी छुट्टियों का उपयोग खेलने के साथ साथ नई बातें सीखने और परिवार के साथ समय बिताने में करें, और अपने आप को बेहतर बनने का मौका दें।

बच्चों, आपको पता है हमारे जीवन में हर रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज यानी 24 मई को मनाया जाता है नेशनल ब्रदर्स डे, यानी भाइयों के प्यार, दोस्ती और साथ का दिन। यह दिन भाइयों के प्यार, अपनापन और उनके साथ को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भाई सिर्फ परिवार का सदस्य ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त, साथी और रक्षक भी होता है। भाई हमारे साथ खेलता है, हमारी मदद करता है, कभी सलाह देता है और मुश्किल समय में हमारा हौसला बढ़ाता है। हाँ, ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती है। छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद भी भाई बहन का रिश्ता या भाई भाई का रिश्ता हमेशा प्यार से भरा होता है। बच्चों, अगर आपका भी बड़ा भाई है तो उसका सम्मान करें और अगर छोटा भाई है तो उसका ध्यान रखें। आज के दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ गले लगाकर थैंक यू भाई बोलें। भाई कभी दोस्त बन जाता है तो कभी शिक्षक बन जाता है। मुश्किल चाहे कितनी भी आए, भाई हमेशा हिम्मत बन जाता है।

अपने तो अपने होते हैं, यानी हर एक इंसान के जीवन में कई सारे रिश्ते होते हैं। भाई बहन का रिश्ता तो खून का होता है जो भगवान बनाकर भेजता है, पर एक और रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, वो है दोस्ती का। इस रिश्ते की गहराई जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले जंगल में चार दोस्त रहते थे, हिरन, कौवा, चूहा और कछुआ। चारों अलग अलग थे लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। एक दिन हिरन जंगल में घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। वह डर कर जोर से मदद मांगने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। कौवा तुरंत उड़कर अपने दोस्तों को बुलाने गया। चूहा तेजी से आया और बोला, दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं अपने तेज दांतों से पूरा जाल काट दूंगा। बस यही हुआ, थोड़ी ही

अरे भाई, कहानी में आगे हुआ क्या? शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया, क्योंकि वो धीरे धीरे धीरे चल रहा था। अब सभी दोस्त परेशान हो गए। हिरन ने एक योजना बनाई। वह शिकारी के सामने घायल होने का नाटक करके लेट गया। शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ा और कछुए को नीचे रख दिया। तभी चूहे ने कछुए की रस्सी काट दी और कौवा ऊपर से कांव कांव कांव शोर मचाने लगा। शिकारी

हिरन के पास पहुंचा, वो भाग गया। तब तक कछुआ पानी में चला गया। इस प्रकार शिकारी खाली हाथ रह गया। चारों दोस्तों ने खुशी से कहा, सच्ची दोस्ती में साथ, समझदारी और मदद सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों, आप भी सच्चे और अच्छे दोस्त बनाएं और बने भी।

बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। खूब पानी पीते रहना है, हल्के और सूती कपड़े पहनने हैं, दोपहर की तेज़ धूप में बाहर नहीं निकलना है न खेलना है, तरबूज, खीरा, आम पन्ना, दही, छाछ जैसी ठंडी चीज़ें खाते रहना है, रोज़ नहाएं और साफ़ सफाई रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और इसी तरह आगे सारे प्रोग्राम्स हम जो अगले संडे को फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम चुनमुन, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

लीजिए सुनिए ये अगला नगमा तलत अजीज़ की आवाज़ में, बोल है हसन काजमी के, और इस गीत को धुन दी है तलत अजीज़ ने।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। स्टूडियो की घड़ी इस वक्त हमें इशारा कर रही है कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का ये आखिरी गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म टाइगर जिंदा है का ये गीत, जिसे गाए थे विशाल और शेखर और आतिफ असलम ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से, जिसे गाया है आतिफ असलम और अलीशा चेन्नई ने, लिखा है आशीष पंडित ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोता, अगला गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है कमल खान ने, लिखा है रजत अरोड़ा ने और संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने। फिल्म का नाम द डर्टी पिक्चर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं।

0: लंबे जाएंगे?
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दबंग का ये गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने, लिखा है फजीज अनवर ने और संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: प्रदीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, भी आपने सुना फिल्म गुरु का ये गीत, जिसे गाया था ए आर रहमान ने, लिखा था गुलजार ने और संगीत से सजाया था ए आर रहमान ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बचना है हसीनों से, जिसे गाया है केके ने और शिल्पा राव ने, लिखा है अन्विता दत्त ने और संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाते हैं आई हेट लव स्टोरी से, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने, लिखा है विशाल दादलानी ने और संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं फिल्म हंसी तो फंसी से, जिसे गाया है सनम पुरी ने, लिखा है कुमार ने और संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत बस यहीं तक। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

तो बोलियो रे मारी। श्रोताओं, अभी आप लोग संगीत सुन रहे थे चंद्र प्रकाश परिहार की आवाज़ में। अगला लोकगीत आपको सुनवाते हैं महेंद्र पवार की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हाकम खान का गाए ये लोक संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना केके का गाया ये सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस हाई प्रोफाइल यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणामों की उम्मीद है। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में GATC वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। श्री मेघवाल ने भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला कलेक्टर

0: डॉ जसमीत सिंह संधू से जिले के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सांसद अग्रवाल की ओर से भीलवाड़ा जिले से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि इससे वस्त्र उद्योग को संबल मिलेगा। श्री मेघवाल ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में दो अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल की धूम आज प्रदेश भर में देखी गई। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जयपुर के SMS स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, कोटपुतली बहरोड, सलुम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कई जगह योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इससे जोड़कर योगाभ्यास, जुम्बा, रोप स्केपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। IPL क्रिकेट के लीग चरण का आज आखिरी दिन है। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच प्लेऑफ के लिए मुकाबला देखने को मिलेगा। आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। वहीं दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। दिल्ली और मुंबई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। राज्य का ज्यादातर हिस्सा प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया है। इस बीच राजधानी जयपुर, अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में कल शाम आंधी बारिश का दौर चला। हालांकि लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल सकी। उधर पश्चिमी राजस्थान में लू के प्रकोप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। करीब 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कल से नौतपे की शुरुआत हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान गर्मी बढ़ने और तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज। श्रोता आपको सुनवाते हैं कृषि जगत कार्यक्रम। चर्चा का विषय रहेगा करेले की फसल में रोग नियंत्रण।

कृषि जगत प्रोग्राम सुनने वाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया हम जी आप बात करा अपा सब्जी पैदावार भी अपा खेतर में ले रखी है और ला ला दिन अपा जानकारी ली के भाई भिंडी री फसल में इन्हें कीट लाग जावे तो किकर आपा ने निदान करना है उनरो टिंडा री उन्नत जी की खेती है वह आप किन तरह से कर सका। हाँ आज आपने जानकारी दिला हुआ कि भाई कई अड़ी छांजड़िया बना परार कई अपने भाईसेन करेला री खेती भी आप करिया करे ताकि छांजड़ी माते करेला री जी बेलड़िया है आप खूब सारी फैल जाया करे और वे जगह करेला है छांजड़ी मायने है उपरला पहाड़ है चारों में खूब लागे और ज्यादा सुन ज्यादा एजी का फल लागे तो आप किसान भय ने मुनाफो भी हुए है और मुनाफो जदी वे ला के भाई जदे अकरेला अपने बायोड़ा है इनर मायने कोई कीट है कोई रोग है वे आप नहीं पनपे। तो आज आपने जानकारी दी रहा कि भाई करेला की फसल में मान लो कोई रोग लागो है तो उनको अपने प्रबंधन है नियंत्रण है वो अपने किन तरह से करना है जानकारी ठावा पहला सुनावा आपने बढ़िया सी गीत रचना।

किसान भाइया आपा जीव आप बात करा कि भाई आपने करेला बायोड़ा है तो गर्मिया में भी आपा करेला बादार आगे जीव हमें बारिश रो मौसम आपने आए तो विन टाइम भी आपा करेला जी की पैदावार है लेवा और हमें जीव खास बात आ है कि करेलो जी को एक फाइबर युक्त सब्जी हो या करे इन महीने पोटेशियम वे जिंक वे मैग्नीशियम वे फास्फोरस वे कैल्शियम वे आयरन वे कॉपर वे मैग्नीज जड़ा जी का तत्व है एर महीने मिलिया करे तो कुल मिलान अपने स्वास्थ्य वास्ते करेलो बहुत बढ़िया होया करे और अपने जीवन चीज है और कई भाई सैन तो करेला रो जूस बना लेवे है कई भांत भांति जी की बीमारियां है चाहे पेट संबंधित हो चाहे दूजी अपने डायबिटीज जी की बीमारी है क्या है कि भाई इन ठीक वह है और ठीक वह नहीं जाए क्योंकि आप बात करा इतना सारा जी का तत्व है इन महीने इनारी विशेषता तो है ही जाए कि भाई अपने शरीर ने फायदो करी जाए तो हमें जो पैदावार लेनी चाहे भाई सैन तो मतलब इन महीने 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस जी को तापमान है उन महीने बढ़िया आप करे लो उगावे किसान भाई आपने खेता में तो उगावी है हाथे आड़े पाड़े मान लो जो अपने घर बनियोड़ा है घर आड़े पाड़े भी जमी पड़ी है तो उठे अपने भीतरे आड़े पाड़े है कटी अपने उठे भी आप करेला भा सका हमें करेला महीने एक रेड बिटल जी को है वो ला गया करे और बहुत हानिकारक कीट है कहीं वे के करेलो जन वगत बडवार करनी हरु करें सा उन वगत जी आप कहवा के भैया प्रारंभिक जी की अवस्था है इन महीने और जो को रेड बिटल है वो लाग जाए करे हमें वो कीट लागे तो पतिया ने तो खावी जाए पर साथे साथे करेलारी जी की जड़ है उनने भी नष्ट करिया करे और रेड बिटलू करेलारी फसल ने बचाव रे वास्ते आपने कई करना चाहिए निम्बाती कीट रक्षक रो प्रयोग करे बढ़िया और 5 लीटर कीट रक्षक ने 40 लीटर पानी में आपने बढ़िया घोल बनावे और सप्ताह महीने 2 लेर 3 दान आपने बढ़िया आपने छिड़काव करे जिन

सु ओ रेड बिटल जी को कीट है ओ नष्ट हो जाया करे। हम एक जो बात आवे के भाई पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी हो जाया करे। इन रोगों कई वे करेले जी की बिलड़िया है पत्तियां है ए सफेद गोलाकार जाल फैल जाए माथे जका मोटा उपरान के कते रंगरा भी हो जाया करे और रोग रमाइने जी की पत्तियां है वे पीली भी पड़ जाया करे और बाद रमाइने सूख भी जाया करे। और रोग एरिसाइपी शिको रेसी एटम नामक जी को बैक्टीरिया होया करे उन कारण होया करे। करेलरी फसल ने सुरक्षित रखने वास्ते 5 लीटर खट्टी छाछ अपने लेनी चीजे खाटी छा उन महीने 2 लीटर गोमूत्र ने लेना और 40 लीटर पानी में मिला प्रोन बढ़िया आपा छिड़काव करा तो इन रोग से छुटकारा मिल जाया करे। करेला रमाइने एक एंथेक्रोनोज रोग भी होया करे और वो करेला रमाइने सब ज्यादा मात्रा रमाइने मिलिया करे आपने। रोग ग्रसित जी को पौधो वे उन्नी जी की पत्तियां है उनके माथे काला धब्बा पड़ जावे है। जिन सुखाई वे प्रकाश संश्लेषण जी की क्रिया है उन रमाइने बाधा उत्पन्न हो जा जिन कारण पौधारो जी को विकास है वो अच्छी तरह से वे कोनी। इन रोग ने बचाव वास्ते किसान भाई कई करे के 10 लीटर गोमूत्र ने 4 किलोग्राम ओडूरा जी का पत्ता है उन्हारे हाथ है 4 किलोग्राम नीम रा पत्ता और लहसुन ने उबाल परा ठंडो कर ले आपने और इनने 40 लीटर पानी रे महीने मिला परार छिड़काव करे जिन सु इन रोग रो उपचार कर सके। करेला महीने एक मोजेक विषाणु रोग भी होया करे खास तौर से नई जी की पत्तियां है उन महीने चित कबरापन आ जाया करे और पत्तियां जी की है वह सिकुड़ जाया करे। पत्तियां छोटी रह जा और पीली पड़बा लाग जा और पत्तियां जी की वृद्धि है आबी रुक जाया करे। इन रोग रे नियंत्रण वास्ते किसान भाई ने कई करना चाहिए खेत रे महीने जी का रोग ग्रस्त जी का पौधा है उन्होंने उखाड़ परार जला देना चाहिए। इनरे हाथे हाथे एमिडा क्लोरोप्रिडो जी को घोल है वो पौधा माथे 10 दिन अंतराल माथे छिड़काव करना चाहिए। किसान भाया आ ही जानकारी के भाई करेलारी फसल रे महीने लागन वाला जी का रोग है उनारो नियंत्रण एवं प्रबंधन जी को है वो आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है आपरे साथी दिनेश राणे जाने सिख दिराओ राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: सखियों कहती हैं, बातें तो जुबा से ही सब करती हैं, मजा तो तब है जब आंखें सीधे दिल से गुफ्तगू करें। जी हाँ, और बात जब दिल की होती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम हमारी प्यारी प्यारी सखियों से जुड़ जाएं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। क्यों जोसना?
1: बिल्कुल खुशबू, क्या बात है, आज आपकी आंखें बहुत चमक रही हैं, बहुत खुश लग रही है आप शायद।
0: हाँ जोसना, ये बात आपने बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: फिर
0: कही
1: इसका
0: है।
1: राज भी तो बताइए हमें।
0: इसका राज ना बहुत गहरा है, और यही राज का जो आज टॉपिक भी हमारा रहने वाला है, जो हम हमारी सखियों के साथ में आज शेयर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। पहले आपने अगर पूछ ही लिया है कि मेरी आंखें बहुत चमक रही है, मैं खुश हूँ, रियल में मैं खुश हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ना समर वेकेशन के अकॉर्डिंग घूमने का प्लान बनाया है।
1: अच्छा,
0: जगह थोड़ी सी सीक्रेट है, बट हाँ ये है कि घूमने का प्लान बनाया है तो दिल बहुत खुश है कि कहीं जाने के लिए मिलेगा, प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा,
1: यानी
0: सुंदरता देखने
1: आप
0: को
1: छुट्टियों का
0: मिलेगी।
1: पूरा पूरा लुत्फ उठाने वाली हैं।
0: बिल्कुल, और इस भरी दोपहरी से भरी गर्मी से कुछ समय के लिए राहत तो मिलने वाली
1: बिल्कुल,
0: है।
1: तो सखियों इस कार्यक्रम में हम इसी बात को और भी आगे बढ़ाएंगे, गुफ्तगू करते जाएंगे और टटोलेंगे।

0: कि इस खामोश जो जुबां है, आंखों की चमक है, उसके बारे में और सुनेंगे खूब सारे सुंदर सुंदर सदाबहार नगमे और करेंगे बातें दिल से दिल तक की।
1: बिल्कुल, लेकिन दिल से दिल तक बातों को थोड़ा सा पॉज लगाते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: बिल्कुल सखियों, आंखें दिल की जुबा ही नहीं बल्कि मन का आईना भी होती है, क्यों जोसा? जैसे
1: बिल्कुल
0: कि आपने मेरी आंखें देखकर बोल दिया था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना?
1: बिल्कुल
0: तो सखियों, ये बिल्कुल सही है कि आपने कहावत भी सुनी होगी कि आंखें मन का आईना होती है, तो ये एक शाश्वत सत्य भी है, पता है
1: जी
0: जोसा?
1: जी
0: क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना, वो चाहे अपने शब्दों से कितना ही झूठ बोले लेकिन उसकी आंखें कभी भी नहीं झूठ बोल सकती,
1: बिल्कुल
0: है ना? चाहे
1: हमेशा
0: वो
1: सच
0: दुख,
1: बयां कर ही देती
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, चाहे वो खुश हो, चाहे दुखी हो, उदास हो, कैसी भी टाइप का जो मन की जो भावनाएं होती है ना, वो आंखों से कहीं ना कहीं अभिव्यक्त हो ही जाती है।
1: जी, क्योंकि ये जो हमारी आंखों की पुतलियां हैं वो दिखती तो भले किसी की नीली है, किसी की काली है, किसी की भूरी है,
0: हाँ
1: पर ये एक ऐसा पारदर्शी शीशा है जिसपे इंसान का चरित्र और उसकी नीयत साफ साफ दिखाई देती है। अगर हमें किसी व्यक्ति को सच में समझना है तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी अभिव्यक्ति पर, उसकी आंखों की अभिव्यक्ति पर गौर फरमाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हमारा तो ये जो प्रोग्राम है ना नारी वाटी का, ये हमारी नारियों के अस्तित्व से ही जुड़ा है ना?
1: बिल्कुल
0: और कहते हैं कि हर एक नारी की आंखें भी कुछ कहती है ना?
1: बिल्कुल
0: और इन्हीं आंखों की सच्चाई के बारे में और बातें करेंगे कि आखिर हर एक नारी की आंखें कहती क्या है। लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक।

0: खुशबू, हम बात कर रहे थे आँखों की, और आँखें तो हमारे अंतर्मन का द्वार होता है, मतलब हमारी इनर वॉइस होती है।
1: बिल्कुल
0: और नारी की आँखें केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं होती, बल्कि ये उसके मन की भावनाओं और संवेदनाओं का सच्चा आईना होती हैं। कहा जाता है ना कि आँखें आत्मा की खिड़की होती हैं, तो नारी की आँखों में भी उसके संघर्ष, सपने और जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, क्या बात कही है ज्योत्सना। और हर एक नारी की जो आंखें होती है ना, वो अगर हम पढ़ना चाहें या अगर कोई पढ़े तो उसमें 100 राज दिखाई देंगे,
0: बिल्कुल।
1: है ना। और हर एक नारी, देखिए नारी के बहुत सारे रूप होते हैं, माँ, पत्नी,
0: बहन
1: बेटी, बहन, इन सब के रूप में होते
0: जी।
1: हैं। तो हर एक रूप की अपनी एक अलग कहानी होती है जो उसकी आंखों से बयां होती है, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें माँ की आंखें, है ना, तो माँ की आंखें क्या कहती है? माँ की आंखें कहती है त्याग की परछाई की मूरत। जी हाँ, अगर हम खुद भी
0: बिल्कुल,
1: कभी अपनी मदर की आंखों में देखें ना, तो आप देखना कि कितनी सारी
0: ममता भरी होती
1: त्याग,
0: है,
1: ममता
0: त्याग
1: भरी
0: भरी
1: होती
0: होती
1: है,
0: है।
1: त्याग भरी होती है। और कई बार तो ऐसा लगता है जब हम खुद मदर बनते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि हमारी माओ ने अपने अस्तित्व को भुलाकर हमें निखारने के लिए कितना कुछ
0: बिल्कुल,
1: बदला है।
0: साथ में बेटी के लिए भी यही होता है कि वो अपने मदर के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उसकी आंखों में हमेशा यही रहता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं।
1: जी, और पत्नी की आंखों की बात करें तो देखिए उनकी आंखें कुछ अलग जो है वो चीज़ें बयां करती है। एक पूरा घर संसार छोड़कर जब लड़की अपनी ससुराल आती है और एक पूरे नए घर को संभालती है, तो
0: बिल्कुल।
1: देखिए ये कितना अलग चीज़ होती है
0: उस
1: ना
0: वो
1: कि
0: आती है और उसके मन की जो उथल पुथल होती है, दुविधाएं होती हैं, और उसकी जो यादें होती हैं वो भी उसकी आंखों में चमकती हैं।
1: बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक पत्नी की आंखें जो होती है ना, उनकी जो परछाई है वो अनकही समझौतों और उम्मीदों को दर्शाती है।
0: और आज की नारी, जो आधुनिक नारी है, वो आत्मनिर्भर और सशक्त है, तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास भी पूरा पूरा झलकता है।
1: ये सबसे अच्छी बात है। आजकल की जो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है ना, उस इस पीढ़ी की जो नारियां हैं वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उनकी आंखों में भी अगर कभी हम झांककर देखें ना, तो एक
0: जी
1: संघर्ष की कहानी
0: जी
1: नजर आती
0: जी
1: है ना,
0: जी
1: कि जॉब भी करना है,
0: घर
1: घर
0: भी
1: भी
0: संभालना है
1: संभालना है,
0: जी।
1: बच्चे भी संभालने हैं, उनका करियर भी बनाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके मन में चल रही होती है, उनकी मन की भावनाएं ये होती है, लेकिन वो कभी व्यक्त नहीं कर
0: व्यक्त नहीं
1: पाती,
0: करती, बोल नहीं
1: लेकिन
0: पाती
1: उनकी,
0: हैं।
1: हाँ, लेकिन उनकी आंखों में हम जरूर पढ़ सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ सखियो, और इस ब्रेक से पहले बहुत ही प्यारा सा गाना हमने सुना था, अखियों की जरों की सी, जो सा कितना प्यारा गाना है ना ये, मतलब हमेशा जब भी मैं सुनती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि अगर ये जरों की ये खिड़कियां अगर नहीं होती ना तो शायद हम इतनी सुंदर दुनिया को कैसे देखते, देख नहीं पाती,
2: नहीं देख
1: तो
2: पाते।
1: हमारा जो सपना है वो एक सपना अधूरा रह जाता कि दुनिया कैसी है, प्रकृति के रंग कैसी है और हमारी आसपास की जो दुनिया है ये कैसी दिखती है।
2: हमारा शरीर का अहम हिस्सा है हमारी आंखें, बहुत छोटा सा हिस्सा है पर इसके बिना तो जीवन जैसे कल्पना ही करना अधूरा हो जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और ये जो झरोखे हैं ना वो हमारे मन को अच्छे से अभिव्यक्त भी करते हैं।
1: क्या बात है।
2: जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं
1: और अगर उदास होते हैं या फिर कोई दुख होता है हमें तो हमारी आंखें छलक उठती हैं।
2: आंसू बनकर बह जाते हैं
1: जी।
2: और तो कभी घूरती निगाहों से अनकहे सवाल भी छोड़ जाती है। अगर मन में कोई दुविधा हो तो बेचैन सी इधर उधर डोलती रहती हैं,
1: बिल्कुल।
2: और अगर मन में बे इंतहा मोहब्बत हो तो बिना शब्दों के सब कुछ कह जाती हैं। और कभी किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ शरारत करनी हो तो मन मन मुस्काती हैं ये आँखें। और अगर कहीं किसी चीज़ का डर हो तो डर के साए में ही अपनी चमक खो बैठती हैं। आँखें भावनाओं का वह आईना है जहाँ दिल की हर कहानी बिना आवाज़ के सुनी जा सकती है।
1: बिल्कुल। और देखिए कि ये जो आंखें होती है ना, ये आंखें भी पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं
2: बिल्कुल
1: होती
2: बिल्कुल।
1: है ना, हर कोई नहीं पढ़ सकता। और एक जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं हमारी लाइफ से वो ये कि हमारा जो भी जीवन साथी है ना, वो हमारी आंखें जरूर पढ़े
2: बिल्कुल।
1: कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम बेचैन है नहीं है, किस तरह की भावनाएं हमारे मन में चल रही है। तो हमारा जो लाइफ पार्टनर है, जो जीवन साथी है, वो हमें जरूर समझे
2: जी,
1: और हमारी आंखें पढ़े और
2: हमारी
1: हमारे मन की
2: खामोशी को,
1: भाव हाँ
2: जी हमारी
1: खामोशी को जाने, हमारे मन की भावनाओं को जाने, है ना।
2: जी
1: और कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक खास चेहरा जरूर होता है जो हमारी आंखों में बसा होता है। हर
2: जी
1: किसी की जीवन में एक खास चेहरा होता है
2: जी
1: जो मन में बसा होता है और उस चेहरे को देखकर शायद हमारे मन की अभिव्यक्ति अपने आप ही हमारी आंखों में
2: बिल्कुल
1: दिखाई पड़ने लगती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।

0: दस लाख दीजिए बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए, 2 लाख भेजिए बाकी बाद में।
1: दो लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: खुशबू ये आंखें तुम्हारी हमारी सब कुछ कह जाती हैं। मुस्कान के पीछे छुपा दर्द, दुख, पीड़ा और आंसुओं में भी छुपी कुछ खुशी, ये सब भी कह जाती हैं, क्योंकि ये हमारे मन से सीधे जुड़ी होती हैं, हमारे मन के अवचेतन मन से सीधे जुड़ी होती हैं।
6: और जिस तरह पता है काफी सारे लोग कहते हैं कि भई ये आंखों को पढ़ा कैसे जाए, है ना, बहुत बहुत गहरा टॉपिक है और बहुत गहरा विषय ये भी कि भई हम कहते हैं कि एक इंसान की आंखों में बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन आखिर वो देखे कैसे? तो पता है इसकी भी एक साइकोलॉजी, अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं, उसकी आंखों को पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसकी एक परफेक्ट साइकोलॉजी अगर आपको वो पता लग जाती है ना, तो आप अपने आसपास किसी भी इंसान की आंखें पढ़ सकते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है ये एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं।
5: बिल्कुल, क्योंकि 80% कम्युनिकेशन तो हमारी आंखें ही कर देती है।
6: बिल्कुल,
5: ये मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। और साथ में हमारी जो आंखें होती है ना, नेचुरल लाई डिटेक्टर भी होती है। अपन ने बात की थी कि हर झूठ को वो पकड़ लेती है, तो वो लाई डिटेक्टर ही हो जाती है, चलती फिरती लाई डिटेक्टर हो जाती है।
6: हाँ, और पता है लाई डिटेक्टर कैसे होता है कि जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो हमारी आंखें है ना कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, हम एक इंसान की आंखों में
5: ही नहीं पाते, मिलाई कांटेक्ट नहीं कर पाते,
6: नहीं कर पाते, तो ऐसे में हम पता लगा सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये इंसान हमसे झूठ बोल रहा है।
5: और साथ में इमोशन डिटेक्टर भी तो होती है, हमारे सारे इमोशंस को वो इतनी बखूबी पहचान लेती है कि जब शब्द बोले जाते हैं तो उनका अगर वो सच्चे हैं तो पता चल जाता है, झूठे हैं तो पता चल जाता है।
6: हाँ, काफी बार ना हम देखते हैं कि सामने वाला जो इंसान होता है ना, वो झूठी स्माइल पास कर रहा है, तो पता है इसे कैसे पता लगा सकते हैं? इसे ऐसे पता लगा सकते हैं सखियों कि जब कोई इंसान आपके साथ खुलकर हंसता है ना, तो उसके गाल भी मुस्काते हैं और उसकी आंखें ना मुस्काते मुस्काते बिल्कुल छोटी हो जाती है, तो ये रियल स्माइल होती है। और अगर कोई इंसान आपके सामने फेक स्माइल पास कर रहा है ना,
5: स्माइल भी छोटी
6: होगी और उसकी आंखें भी ना बिल्कुल छोटी नहीं होगी,
5: वो नजरें
6: चुरा रही होगी
5: जी। और जब हम कोई इंटरव्यूज देने जाते हैं या हमारी पर्सनालिटी का अगर एक्सेस किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब कुछ बयां कर देती है कि हम नर्वस हैं कि कॉन्फिडेंट है, तो उसमें भी आंखों का सबसे बड़ा स्थान होता है। अगर हमारी जो नज़रें झुकी हुई हैं तो शर्म से या नर्वसनेस किस कारण होती है, और अगर आत्मविश्वास है तो वो सीधी नज़र होती है,
6: बिल्कुल
5: कॉन्स्टेंट रहती है।
6: और हमारी जो आंखें होती है ना, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा प्रमाण होती है, प्रमाण होती है कि अगर आप आई कॉन्टेक्ट बराबर लेकर चल रहे हैं ना, तो सामने वाला इंसान भाप लेता है कि नहीं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है। ये तो थी साइकोलॉजिकल बातें, है ना जोत्सना। अब हमारी सखियों को हम बताते हैं कि भाई हमारी जो आंखें होती है ना, उसका एक साइंटिफिक दृष्टिकोण भी होता है कि हमारी आंखें एक्चुअल में काम कैसे करती है। दो आंखें हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही गहरी इसके पीछे साइंटिफिक दृष्टिकोण है, और इनसे हमें दिखाई कैसे देता है ये जरा सा हम हमारी सखियों को बता दें कि भाई जब भी हमारी आंखें जो होती है वो किसी चीज को देखना चाहती है, तो जो प्रकाश होता है उसकी किरणें किसी वस्तु से टकराकर आंखों में बसे लेंस से गुजरती है, जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है, और इसके बाद भी देखिए पूरा नहीं हुआ, इसके बाद में ऑप्टिक नर्व्स होती है छोटी छोटी, जो इस संदेश को हमारी मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंचाती है, और मस्तिष्क उस छवि को, उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो दिखता है ना वो उल्टी इमेज होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है आंखों को कि जो हमें दिखता है ना वो उल्टा होता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है ना उसे कन्वर्ट करके सीधा दिखाता है।
5: जैसे हमारी मिरर इमेज होती है जो वो उल्टी होती है, पर हमें बाद में उसको सीधा देखने को मिलता है,
6: सीधा देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट है सखियों आंखों के बारे में, तो अपनी आंखों की केयर भी हमें करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगी, डिस्कस करेंगी, लेकिन फिलहाल ही चलते हैं आपको इस प्यारी से म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: उठती भी हैं आत्मविश्वास से। इनकी जो पेयरिंग है ना और टाइमिंग है वो हमेशा अद्भुत रहती है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई रिश्ता निभाना है तो दो आंखों की तरह निभाना चाहिए, जो एक साथ सोती हैं, एक साथ जगती हैं, और एक साथ हंसती भी हैं और एक साथ रोती भी हैं। अगर एक आंख में आंसू आ जाए तो दूसरी खुद ब खुद भर आती है। आंखें कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करती खुशबू, बस साथ रहती हैं। जीवन का कोई रिश्ता, कोई भी रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। ना ये मैं कि ये ज़्यादा और तुम कम, ना कोई हिसाब किताब, बस साथ हो, एहसास हो और एक दूसरे का दर्द समझने की आदत हो। क्योंकि सच्चे रिश्ते अल्फाजों से नहीं, एहसासों से चलते हैं।
1: क्या बात कही है ज्योत्सना। और देखिए, आंखें तो

0: नजर आती है। आंखें कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करती खुशबू, बस साथ रहती हैं। जीवन का कोई रिश्ता, कोई भी रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, ना ये मैं कि ये ज़्यादा और तुम कम, ना कोई हिसाब किताब, बस साथ हो, एहसास हो और एक दूसरे का दर्द समझने की आदत हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते अल्फाजों से नहीं, एहसासों से चलते हैं।
1: क्या बात कही है ज्योत्सना। और देखिए, आंखें तो हमें इस खूबसूरत दुनिया और प्रकृति के रंगों को दिखाने का सौभाग्य भी देती है, और ऐसी ही बातें जो हैं वो हमारी कला, कविता और साहित्य में भी लिखी गई है। आंखों की खूबसूरती को और उसकी भाषा को हमेशा कला और साहित्य में पहला स्थान मिला है।
0: बिल्कुल
1: देखिए, बहुत सारी शायरियाँ ऐसी है, बहुत सारी कविताएँ ऐसी है जो आंखों से ही शुरू होती है और आंखों पर ही खत्म होती है।
0: और इनके बहुत सारे नाम भी हैं, नेत्र, नयन, चक्षु, नैना, इन सबको, इन शब्दों को भी यूज करके हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाने बने हैं।
1: और देखिए, नैना पे, आंखों पे, बिल्कुल आपने सही कहा कि इतनी सारी गाने पड़े भरे पड़े हमारे बॉलीवुड में, और इन गानों को अगर हम सुने ना तो एक अलग दुनिया हमें उन दो नैना से दिखाई देती
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और क्योंकि जो बातें लफ्जों के दायरे में नहीं आती, सिमट पाती, उसे आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं।
1: और देखिए, अब पलक झपकते ही हमारा जो समय है वो भी निकलता जा रहा है, तो क्यों ना सखियों को एक और प्यारा सा गाना सुनाया जाए।
0: बिल्कुल।

0: जी हाँ सखियों, हमारी जो दू नैना है ये कोई ना कोई कहानी ज़रूर बयां करती हैं, हर रोज़ करती हैं, हर पल करती हैं, हर दिन करती हैं, लेकिन ये
1: इनका ख्याल
0: कहानी
1: भी रखना
0: इनका
1: पड़ता है।
0: ख्याल भी रखना पड़ता है, क्योंकि जब हमारी दो नैना कहानी बयां कर रहे हैं तो इनका ख्याल रखना भी तो
1: जी
0: हमारा
1: बिल्कुल
0: ही कर्तव्य है ना। और जो सर देखिए आजकल की जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल
1: जी।
0: है, तो हम सभी को पता है कि हम लोग डिजिटल गैजेट्स का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर मोबाइल्स सब हम लोगों के हाथ में आजकल है ना। चाहे
1: स्क्रीन
0: वो,
1: टाइम बढ़ गया
0: हाँ
1: है।
0: चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक गांव की महिला हो, शहर की
1: जी
0: महिला हो, है ना, या फिर और आधुनिक नारी तो जो है
1: सारा
0: वो
1: काम भी तो
0: काम
1: इसी
0: भी,
1: पर
0: हाँ
1: है।
0: काम भी टिका है, जॉब भी करते हैं, तो घंटों तक हम स्क्रीन्स का उपयोग करती
1: बिल्कुल
0: हैं। तो ऐसे में सखियों बहुत ज़्यादा जो है घातक प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है
1: थक
0: और
1: जाती
0: थक
1: हैं।
0: जाती है हमारी आंखें। और कई बार तो ऐसा होता है ना जोत्सरा कि हम लोग जो घरेलू महिलाएं भी होती है ना, तो हमें भी इतना टाइम नहीं मिलता कि
1: बिल्कुल
0: हम हमारी आंखों की केयर कर पाए। काफी टाइम बाद हमें लगता है कि नहीं, हमारी आंखों में दर्द हो रहा
1: दर्द
0: है,
1: हो रहा
0: या
1: है,
0: हमारी नजर थोड़ी
1: कम हो
0: कमजोर हो
1: रही,
0: रही
1: जी
0: है, या आंखों में जलन जैसा कुछ हो
1: जी
0: रहा है, तो
1: धुंधलापन हो रहा है।
0: धुंधलापन हो रहा है, तो ये सारी चीजें ना हम भी काफी बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये जो दो आंखें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है।
1: जी बीच बीच में थोड़ा गैप भी लेना चाहिए, 20-20 सेकंड का गैप ले लेना चाहिए। अगर हम बहुत कंटिन्यू ऑनलाइन काम कर रहे हैं या कंप्यूटर्स के लिए काम कर रहे हैं तो बीच बीच में गैप लेते रहने चाहिए। साथ साथ में आंखों का व्यायाम भी करना चाहिए, जैसे बीच बीच में उसको घुमा लिया, इधर से आंखें कर ली या बंद करके बैठ गए, और कई ब्यूटी टिप्स भी अपनाने चाहिए।
0: ये जैसे आपने 20-20 मिनट का बोला ना, तो ज्योत्सना की 20-20-20 का रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आप स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद में 20 फिट की दूरी से और 20 सेकंड तक किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखें, है ना। तो ये 20-20 का रूल आपकी आईज को बहुत ज्यादा सूद करता है, बहुत
1: जी
0: ज्यादा रिलैक्स करता है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम कर सकते हैं घर पे, हमारी सारी सखियां कर सकती है, कि अपनी आंखों का ख्याल आप रखें खान पान के जरिए। जी हाँ,
1: जी
0: संतुलित आहार आप ले सकते हैं, हरी
1: हरी सब्जियां खा
0: पत्तेदार
1: सकते
0: सब्जियां
1: हैं जी।
0: खाइए, गाजर विटामिन से युक्त जितना भी खाना आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी आंखों के
1: अंकुरित
0: लिए।
1: भोजन लीजिए।
0: हाँ, खूब सारा पानी पिए, खुद को हाइड्रेट रखें, तो अगर आप खुद को हाइड्रेट रखेंगे ना, तो बाहर जो हमारे सूर्य देवता विराजमान हैं, जो इतनी गर्मी
1: आंखें
0: बरसा रहे
1: आंखें
0: हैं
1: उनसे भी जलती हैं, तो
0: उन,
1: गॉगल्स लेकर भी निकलना चाहिए।
0: हाँ, तो ये सारी चीजें हम छोटी छोटी करके हमारी आईज का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपकी आंखें जल रही है
1: जी
0: तो आप रोज वाटर डाल सकते हैं, गुलाब
1: जी
0: जल एक
1: ठंडा
0: बहुत
1: पानी
0: ही
1: से भी धो सकते
0: ठंडे
1: हैं।
0: पानी से भी धो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें करके आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: खुशबू जग की खूबसूरती दिखाती है, आँखें कुदरत के हर प्राणी में नजर आती हैं। आँखें हैं तो सब कुछ है, रोज कितनी खुशियाँ दे जाती हैं आँखें। ये होती तो खुद तो होती है ब्लैक एंड वाइट, पर दुनिया हमें रंगीन दिखाती है।
6: ज्योत्सना कहते हैं ना कि आँखें केवल अंग ही नहीं अस्तित्व का आधार है, इस सुंदर सी सृष्टि का अनमोल सा उपहार है।
5: बिल्कुल, आँखें है ना तो सब कुछ है, ईश्वर का ये नायाब तोहफा है। आंखें हैं तो सब कुछ है, नेत्रदान करके भी हम किसी और के जीवन में खुशियां भर सकते हैं।
6: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो अनमोल सा उपहार हमें ईश्वर ने दिया है, काफी सारे लोग होते हैं ना जिन्हें हम देखते हैं कि वो इस उपहार से वंचित है। जिस सुंदरता का आनंद हम ले सकते हैं हमारी दो आंखों से, काफी सारे लोग नहीं ले पाते हैं। और उसका एक बहुत ही अच्छा ये तोड़ है कि हम नेत्रदान करके उन लोगों को भी इस सुंदरता का आनंद लेने का मौका दे सकते हैं।
5: मनोप्रांत उनको, हमारी आंखें भी अमर रहती हैं और साथ में उनको भी नया जीवन मिल जाता है।
6: नया जीवन मिलता है, और देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है ना, आप अभी से ही अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और मनोप्रांत जो भी आप के रिलेटिव है आप उन्हें पहले से ही इसके बारे में सचेत कर सकते हैं कि नहीं मेरी इच्छा है कि मैं आई डोनेट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो इस विषय को लेकर वो आज से नहीं बल्कि अभी से ही विचार कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी दो आंखें किसी और को इस मौके को जरूर दें कि वो अपने आसपास की सुंदरता को देख पाएं। और

0: खुशबू, हमने हमारी सखियों के साथ बातें की ढेर सारी इस जादुई भाषा के लिए, और हमारा ट्रांसमीटर से सहयोग दिया पीके सेन और पारसपुरी गोस्वामी ने, और कंट्रोल रूम से साथ दिया सुनील जयपाल ने।
1: और हमारी सखियों तक इतनी प्यारे प्यारे म्यूजिकल ट्रैक जो है वो कंसोल के जरिए पहुंचाए श्रेया ने। तो सखियों, जी हाँ, आज जो हमारी मन की बातें हमने इन आंखों की खिड़कियों के संग की, इन
0: जी
1: बातों को आप जरूर याद करिएगा, और इसी वादे के साथ कि अगले प्रोग्राम में आप सभी से होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए अपनी सखी खुशबू
0: और ज्योत्सना को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार।
3: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
4: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
3: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा

0: की आधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई

0: ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिका 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमरीका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे

0: फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमरीका से हटाने का फैसला ईरान, अमरीका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले पांच दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमरीका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया था नदीम शर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कहो ना प्यार है से, जिसे गाया है लकी अली ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सरिक ने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना राज फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, लिखा था समीर ने और संगीत से सजाया था नदीम शरवन ने।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।

0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म यस बॉस से, जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म ओम शांति ओम से, जिसे गाया है केके ने, लिखा है विशाल ने और संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत बस यहीं तक। अभी आप आखिरी गीत सुन रहे थे फिल्म आई हेट लव स्टोरी से, जिसे गाया था महालक्ष्मी अय्यर और सूरज जगन ने, लिखा था अनविता दत्त ने और संगीत से सजाया था विशाल और शेखर ने। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज। दिन के 3 बजे हैं। सूर्य नगरी चैनल की ये सभा अब संपन्न होती है। सूर्य नगरी चैनल के कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5 बजे फिर से आपकी सेवा में उपस्थित। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मेरे वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए दूसरी सभा का आगाज करें युवा दोस्तों के अपने कार्यक्रम युवा वाणी के साथ।

0: फिर से इसी प्यार से वीकेंड पर हम आ चुके हैं आप ही का कार्यक्रम युववाणी लेकर, जहाँ आज का दिन होता है बड़ा ही खास। हर वीकेंड आप भी इंतज़ार करते हैं और हम भी इंतज़ार करते हैं कि कब ये दिन आएगा और आपसे ढेर सारी बातें होगी। जी हाँ, अभी तो शायद संडे भी इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तो हर दिन संडे जितना अच्छा लग रहा है। पर हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, जो शायद स्कूल के दौर से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, उन्हें तो अपने वेकेशन बड़े याद आते होंगे और ये संडे बड़ा ही प्यारा लगता होगा। आज हम इस संडे को बड़ा ही खूबसूरत बनाएंगे अच्छे अच्छे गाने और अच्छी बातों के साथ। आज थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हिट कराना भी ज़रूरी है क्योंकि हाँ, बात हो और थोड़ा बैक इन द टाइम नहीं जाया जाए तो मज़ा नहीं आता। हाल फिलहाल मेरा नाम है रिद्धि और मेरे साथ है
1: मैं हूँ विकास। तो जैसा कि श्रोता रिद्धि ने बताया कि गर्मी जो है रिद्धि वो भी अपने पीक पर है। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने का जो है वो मन ही नहीं कर रहा है। साथ ही साथ जो है हम एंजॉय करना चाहते हैं संडे को अपने घर पर, या फिर अगर हम बात करें कोई ब्यूटीफुल सा विजिटिंग प्लेस है वहाँ पर जाने को।
0: तो हाँ, अभी तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इसी गाने के साथ। और आज किस मुद्दे पर बात होगी वो आपको बताएंगे। और अभी अभी तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, हाल फिलहाल आप ये गाना सुनिए।

0: ये कहना तो काफी सच होगा कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो सुबह 7 बजे जाने के लिए जो जल्दी उठ के तैयार होना होता था उसमें बड़ा आलस आता था कि यार क्या है, रोज रोज जाना पड़ता है। पर जैसे ही वेकेशन स्टार्ट होते थे, कभी भी ऐसा लगता है कि कहीं समर कैंप लगा है, आपके पेरेंट्स ने आपको वहां पे एनरोल करा दिया, तो जो तैयार होने की स्पीड होती थी भाई साहब, दोनों सेम टाइमिंग होते थे कि ऐसा नहीं है कि एक का टाइम बहुत लेट है, एक का बहुत जल्दी, लगभग सेम टाइम 7-8 बजे सुबह जाते थे। और समर कैंप की एक्साइटमेंट जो होती थी कि पता नहीं क्या सीख के आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो उसका क्रेज अलग होता था भाई। जैसे ही हम वेकेशन की बात करते हैं तो शायद दिमाग का जो गियर है वो रिवर्स में चला जाता है और वो गाड़ी इतनी पीछे चली जाती है कि लगता है कि यार एक बार और अगर लाइफ में वो वाले वेकेशंस मिले ना तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा रिद्धि आपने। जैसा कि अगर हम बात करें आज की, तो आज भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले की चीज़ें हैं वो आज की जो जनरेशन है वो मिस कर सकती है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि जो हमारे टाइम की जो बात थी, आज से अगर मैं बात करूँ 10-20 साल पहले की, तो उस टाइम जो समर वैकेशंस का लोग बेसब्री से, मतलब स्टूडेंट हो गए या फिर बच्चे हो गए, वो बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि यार कब जो है समर वैकेशंस आए, कब हम काफ़ी सारी नई एक्टिविटीज सीखे, कैंप के अंदर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, या फिर बहुत ही बेसब्री से हमें इंतज़ार रहता था। लेकिन आज के टाइम में जो है वो काफ़ी समय थोड़ा बदल गया है, क्योंकि काफ़ी सारे गैजेट्स है, टेक्नोलॉजीज़ है, जो आपको घर बैठे बिठाए जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवा रही है ऑनलाइन, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज तो हुई है।
0: हाँ, और कई बार ऐसा भी होता था कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट समर कैंप्स कि आप बाहर जाके सीख रहे हो, पर
1: बिल्कुल
0: घर की भी जो मेमोरीज थी, मतलब
1: एग्जैक्टली
0: जो बचपन में चीज़ें एंजॉय करते थे। एक टाइम था जब मतलब इन्वर्टर्स का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था कि आपके
1: बिल्कुल।
0: घर पे
1: और
0: लाइट जा रही है तो आपके घर पे इन्वर्टर से वापस आपको फील ही नहीं हो रहा कि लाइट गई है। तो बहुत बार ऐसा होता था कि अक्सर अगर रात को लाइट जा रही है, शाम हो गई या फिर लेट नाइट जा रही है।
1: एक चीज, जैसा कि रिद्धि अभी आपने बोला कि दिस इज नॉट अबाउट अ समर कैंप, ये केवल वो ही बात नहीं है, उसमें हमारा जो एक फीलिंग्स रहती थी, जो हमारे वो कहते हैं ना आसपास जो एनवायरनमेंट रहता था वो काफ़ी क्रेजी रहता था। यहाँ पे खूब सारे बच्चे जो होते थे वो एकदम चंचल से होते थे, गेम्स खेलते थे, या एक दूसरे के साथ में जो है एक दूसरे की आर्ट एंड क्राफ्ट में हेल्प करवाते
0: मैं वही
1: थे।
0: तो बता रही हूँ, जैसे
1: बिल्कुल
0: लाइट जाती थी तो सब बच्चे बाहर आ जाते,
1: बिल्कुल
0: गली
1: बिल्कुल
0: के सब बच्चे बाहर आकर गेम्स खेल रहे हैं। और
1: बिल्कुल
0: उस वक्त ये लगता था कि कब लाइट ना आए, क्योंकि लाइट आती तो सबके घर वाले अंदर बुला लेते
1: बिल्कुल
0: कि अब तो
1: बिल्कुल
0: सोने का टाइम हो गया, सो जाओ। तो वो जो फीलिंग थी कि अरे भाई लाइट थोड़ी देर और बंद रहे, हमको खेलना है, तो
1: बिल्कुल
0: वो वाली फीलिंग। आज के टाइम तो वैसे भी इन्वर्टर्स इतने एडवांस हो गए कि आपको फील ही नहीं होता लाइट जाए,
1: बिल्कुल
0: पर अब तो ये हो गया है कि शायद एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है या बड़े अप्लायंसेस नहीं चल रहे, तो लगता है कि लाइट कब आएगी तो गर्मी कम लगे,
1: बिल्कुल
0: वो इनकन्वीनियंस थोड़ी कम फील हो। पर हाँ, ये तो है कि जब हम छोटे थे तो ये जो इनकन्वीनियंस होती थी ना, इसकी वेट करते थे कि
1: बिल्कुल
0: कब
1: बिल्कुल
0: हो और हम घर के बाहर भागे,
1: तब वो इनकन्वीनियंस भी हमें बहुत अच्छा लगता
0: बहुत
1: था।
0: अच्छी लगती थी। जी हाँ श्रोताओं, आज का जो टॉपिक है वो ये है, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया ऑफ समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियाँ। और शायद हर इंसान के पास इसके किस्से रहेंगे और बात करें उतनी कम है। तो आप भी बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, और हमारे नंबर है 0291255300, और दूसरा नंबर है 2554300।
1: तो दोस्तों आप भी

0: तो विकास, जैसे कि बात चल रही है समर वेकेशंस की, तो अभी अगर देखा जाए तो हम लोग उस पॉइंट पर खड़े हैं कि बहुत जल्द तो क्या कल ही हमारे यहाँ शुरू हो रहा है नौतपा,
1: जी
0: जिसकी अगर बात की जाए तो अगले जो 9 दिन है उसमें जो गर्मी का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये स्पेसिफिक जो 9 डेज होते हैं, और हमारे राजस्थान में भी, खासकर हमारे शहर जोधपुर में, तो देखें तो इसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है पहले से ही स्टार्ट हो गया है।
1: बिल्कुल
0: पर ये जो आगे 9 दिन आ रहे हैं, इसमें हम सभी को अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं कि बाहर की गर्मी का भी ध्यान रखना होता है, कि बाहर घूमने जाना है या फिर चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ये चलते चलते ना दिमाग में हम लोग बाहर निकल जाते हैं, पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, ये बहुत ही ज़्यादा एडवर्स होता है। क्योंकि कई बार लू लगना और ये सब एक दिन का सिम्टम नहीं होती,
1: बिल्कुल।
0: ये धीरे धीरे लगती है, और ये जब होता है तो ये बहुत खराब चीज़ होती है।
1: लेकिन ऐसे में रिद्धि हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम सबसे पहले अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको इस बारे में अवेयर करें, साथ ही साथ जो खुद है वो भी हाइड्रेट रहने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि आने वाले जो 9 दिन हैं वो काफ़ी, जहाँ पर जो गर्मी होगी वो काफ़ी पीक पर होगी, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम खुद को मेंटेन रखें, हाइड्रेट रखें। साथ में जो है वो आप एनी टाइम अपने पानी जो है वो कैरी कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप जैसे कि ORS वगैरह जैसी काफ़ी सारी एनर्जेटिक ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं एनर्जी के लिए।
0: ये तो होता है विकास, पर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हम
1: जी
0: हमारा ख्याल तो रखते ही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शायद ही कोई इंसान होता है जो खुद का ख्याल ना रखे। पर इस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आसपास वालों का ध्यान रखें,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आसपास इंसानों के अलावा जानवर भी
1: जानवर
0: होते
1: भी है
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: और जितनी रिक्वायरमेंट सर्वाइव करने की पानी की हमको है, उतनी ही
1: बिल्कुल
0: उनको भी
1: बिल्कुल
0: होती है कि साफ पानी का प्रॉपर सोर्स मिले। अगर कोई इंसान कुछ ऐसा कर ना भी पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेस बाहर रखे होते हैं, जिसमें
1: बिल्कुल
0: पानी डालने का कोई पात्र हो गया या फिर कोई छोटा सा ऐसे बॉक्स यूटेंसिल बाहर रखा होता है, तो हम
1: बिल्कुल
0: देखते हैं कि
1: बिल्कुल
0: लोग उसमें झूठा खाना डाल देते
1: झूठा
0: हैं,
1: खाना डाल देते
0: बचा
1: हैं
0: हुआ खाना
1: बिल्कुल
0: डाल देते हैं, ये सोच के कि जानवर उसको खा लेंगे।
1: बिल्कुल
0: पर एक्चुअली वो जो छोटी छोटी ट्रेज होती है वो पानी की होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: लेकिन अगर रिदि एक चीज़ आपने ये भी सही बोली कि लोग ऐसा कर देते हैं, और अगर ऐसा लोग करते भी है तो उनको एक साथ में जो है वो एक अलग से जो है वो एक बॉक्स रख देना चाहिए जहाँ पे उनको पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि अभी विकास ये देखने को मिल रहा है कि आप रैंडमली कहीं जाएंगे ना, तो
1: बिल्कुल
0: पक्षी बेहोश हो रहे हैं। तो
1: बिल्कुल
0: पक्षी के बेहोश होने का कारण यही है कि उन्हें पानी के सोर्स नहीं
1: पानी
0: मिल
1: के
0: रहे,
1: सोर्स नहीं
0: और
1: मिल पा
0: जैसे
1: रहे
0: ही
1: हैं
0: आप उन पक्षियों पे पानी डालेंगे वो फट से उड़ के उड़ जाएंगे, मतलब उठ के उड़ जाना
1: बिल्कुल
0: हो। तो यही वो
1: बिल्कुल।
0: चीज़ होती है कि उनमें पानी की कमी है,
1: तो
0: प्रॉपर सोर्स नहीं मिल रहा पानी
1: बिल्कुल,
0: का।
1: लेकिन रिद्धि पक्षियों के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हम अपने घरों की छत पर जो है वो जो छोटी सी पानी की कुंडी होती है भर के वो भी रख सकते हैं, ताकि जो वो बेजुबान पक्षी है वो आते जाते जो है उनको कोई तकलीफ ना हो, ये भी एक चीज़
0: पक्षी
1: है
0: हो गए, स्ट्रे एनिमल्स हो गए, तो आपकी
1: बिल्कुल।
0: जितनी कोशिश पड़े आप उनके लिए कीजिए। और अगर आपके कार्स के नीचे अगर कोई जानवर सो रहा है, डॉग्स सो रहे हैं, कैट्स सो रही है, तो उन्हें प्लीज़ ना भगाएं। अगर आपको आपकी गाड़ी निकाल के कहीं जाना है, तो आप ज़रूर देखिए कि कार के नीचे कोई जानवर है तो नहीं, अगर उसे बैठा है तो उसे प्लीज़ हटा दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं कि लोगों को पता नहीं होता
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: उनके
1: कहा
0: गाड़ी के
1: आपने,
0: नीचे कोई जानवर
1: क्योंकि
0: है।
1: वो
0: तो
1: बेचारे जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पर उनको ठंडक मिल सके, तो वो ऐसी ही जगह जो है वो प्रीफर करते हैं, चाहे किसी वो पेड़ की छाया में हो, या फिर जैसा कि आपने अभी बताया कि कार हो गए या ट्रक्स हो गए उनके नीचे जो है वो स्टे करने लग जाते हैं।
0: और ये चीज़ भी है कि जैसे हमें अनकंफर्टेबल फील होता है गर्मी में, इतना
1: बिल्कुल
0: हम एसी कूलर्स में रहते हैं, हम तो बहुत ही फॉर्चुनेट लाइफ जी रहे हैं, पर वो जो छोटे छोटे पपीज होते हैं वो भी बच्चों की तरह होते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनको भी गर्मी लगती है, तो उनको भी कोई सोर्स चाहिए जहाँ पर उन्हें कंफर्ट मिल जाए। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप खुद की तरफ से कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो बना है उसे ख़राब ना करें, और जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, आज बात चल रही है नॉस्टैल्जिया पे, जो समर वेकेशंस का होता था, नानी के घर जाना, ढेर सारी मस्ती करना, वो एंड मोमेंट पे अपना होमवर्क ख़त्म करना। तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं, और अगर आपके भी ऐसे रहे हो तो आप ज़रूर से फ़ोन करके बता सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया हो कि इन छुट्टियों को कैसे इनोवेटिव बनाया जाए, इसमें
1: बिल्कुल
0: क्या नया किया जाए, तो आप ये चीज़ भी शेयर कर सकते हैं। नंबर हम आपको फिर से बता देते हैं, जो कि है 02912553300, और दूसरा नंबर है 2554300, और हिंदी में बताएं तो ये है 2553300, और दूसरा नंबर है 2554300। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका कॉल का, जब तक आप एंजॉय कीजिए ये वाले ट्रैक्स।

0: कुड़ी नशे सी चढ़ गई।
1: तो श्रोताओं, स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम युववाणी में। जैसा कि अभी रिद्धि ने थोड़ी देर पहले बताया था कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, यानी कि आप भी अपना जो समर वैकेशंस का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे नंबर है 0291255330, और हमारे दूसरे नंबर है 0291255430।
2: तो विकास, आज जो हमारी बात चल रही है ये टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, तो आपकी कोई बता सकते हैं आप अपनी मेमोरीज जो आपकी समर वेकेशंस में रही हो, जो आज भी अगर आप याद करें तो एक छोटी सी स्माइल आपके फेस पे आती हो?
1: बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी मेमोरीज़ है रिद्धि, लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूँ उन एक मेमोरीज़ की, तो ये है कि उस टाइम जो हमने हमारी जो वेकेशन थे, अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो एंजॉय करी। यानी कि वो जो फ्रेंड्स थे, जो कहते हैं स्कूल फ्रेंड्स थे, जो आपने मिसिंग वाली चीज़ थी वो मैं कहना चाहूँगा कि उनके साथ जो टाइम स्पेंड गया, उनके साथ जो हमारी मेमोरीज़ बनी, चाहे वो गेम्स को लेकर हो, चाहे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर हो, या कोई भी एक्टिविटीज़ को लेकर हो, तो वो मेमोरी जो है वो हम आज भी मिस करते हैं कि यार काश हम भी वो वैकेशंस जो है वो एन्जॉय कर पाते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब हम थोड़े से जो है वो बड़े हो गए हैं, और साथ ही साथ हमारे जॉब प्रोफेशन में

0: एंटर कर गए हैं, तो हमारे लिए जो समर वैकेशन वाला जो स्लॉट है वो काफ़ी कम हो चुका है। जैसे कि पहले हमें जो है वो आफ्टर एग्ज़ाम यानी स्कूल के एग्ज़ाम्स के बाद में या बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद में जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम मिलता था, तो ये चीज़ें मैं मिस करता हूँ।
1: तो विकास, ये जो बातें हैं ये ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ बड़ी ही खूबसूरत होती जाए। और दूसरी चीज़ ये है,
0: बिल्कुल
1: मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एसेंस है मासूमियत का,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। जैसा आपने बताया कि वो थोड़ी सी पीछे जाती चीज़ें, बट मुझे लगता है कि एसेंस कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: इनोसेंस
0: बिल्कुल
1: ख़त्म नहीं होना चाहिए, बचपना ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको पूरे पूरे वेकेशंस ना भी मिल रहे हो ना, तो एटलीस्ट जो आपका संडे आता है उसको भरपूर इंजॉय कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ी ऐसी चीज़ें करके जो शायद बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेंस ना बनाती हो। दिन भर नींद लेना है, दिन भर किसी एक गेम को खेलना, दिन भर मूवीज़ देखना है, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना।
0: और मैं तो ये कहता हूँ रिद्धि, कि अगर चलो आप उस टाइम को मिस करते हैं तो आप अपने भांजे या भांजी, भतीजा या भतीजी के साथ में जो है वो उनके साथ जो है थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अगर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम देके अपनी जो मेमोरीज़ है वो रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास जो अपने रिलेशन में जो बच्चे हैं या फिर आपके जो नेबर्स के बच्चे हैं उनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जो है वो आप अपने जो कहते हैं ना ओल्ड डेज़ को जो है वो याद कर सकते हो।
1: हाँ, और अगर साथ में कोई ना भी हो ना विकास, तो मुझे लगता
0: बिल्कुल
1: है इंसान की सबसे बेस्ट कंपनी होती है वो खुद।
0: बिल्कुल
1: मतलब आपको आसपास कोई नहीं हो ना, तो खुद से एंजॉय करना सीखे। मतलब और वो होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ ऐसी पुरानी करते हैं, आप उसे रिवाइज करते हैं, कोई पुरानी किताब पढ़ते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई पुराने बोर्ड गेम्स खेलते हैं। मतलब छोटे थे तब तो नहीं खेलना आता था कि कैसे दो जनों का गेम आप एक साथ खेल सकते हो, पर हाँ अब तो ऑप्शन आ गए कि आप खुद से भी खेल सकते हो, आप खुद खुद के माइंड प्रोसेस से भी चीज़ें
0: बिल्कुल
1: सीख
0: सही कहा
1: सकते हो।
0: आपने रिद्धि। और जैसा कि आपने अभी एक्टिविटी की बात करी कि जैसे सिंगल टाइम जो है यानी कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है इंसान को, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें तो पहले हम आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो गए या फिर प्लांटेशन हो गया, वो सारी चीज़ें जो है हम करते थे समर्स में। लेकिन आज मैं अगर बात करूँ तो आप उन चीज़ों को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप जो है गार्डनिंग ज़रूर करें, साथ ही साथ में जो है वो आप ब्यूटीफुल प्लांट्स जो है वो अपने रूम में सजा सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो कि इंडोर प्लांट्स होते हैं, वो जो ग्रो करते हैं वो छाया के अंदर ही करते हैं, तो शेडो के अंदर ही करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आप अपने आसपास लगा सकते हो अपने खाली टाइम में। फिर आपने बात करी बुक्स की, तो जो भी आपके पास जो पुराने नॉवल्स हैं या फिर बुक्स हैं उनको आप वापस रीड आउट कर सकते हो, या फिर अपनी डिक्शनरी में जो है वो न्यू नॉवल्स हो गई या नई नई चीज़ें जो है वो आप ऐड कर सकते हो।
1: हाँ, और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम जैसे बता रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को आप वापस जिए, तो लोगों को लगता होगा कि क्या बचपने वाली बातें हैं कि स्केचिंग कर लो, ड्राइंग कर लो। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉट्स होते हैं जिसमें हम
0: बिल्कुल
1: गमले लगाते
0: बिल्कुल
1: हैं, अगर हम उन्हें पेंट करके रखें, मतलब वो
0: बिल्कुल
1: लगेगा तो ऐसा कि क्या चीज़ है, पर अगर हम उसे पेंट करके रखें, कहीं घर में सजा के रखें, तो वो एक याद है जो हमेशा हमारे साथ रहती
0: बिल्कुल
1: है।
0: दीदी। और ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा या कहीं स्पेसिफिक जो है कहीं क्लासेस लेनी पड़ेगी, आपको घर बैठे बिठाए अपने मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारी सोशल साइट्स हैं, वहाँ पे आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिलेगा कि किस तरीके से जो है वो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है वो
1: इन्वेस्ट कर
0: तैयार
1: सकते
0: बिल्कुल अपना टाइम
1: हैं।
0: इन्वेस्ट कर सकते हैं। या ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको सोशल मीडिया पर आजकल देखने को मिल रही है और लोग उससे सीख भी रहे हैं।
1: और सच मानिए दोस्तों, जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हाँ, ये ज़रूर अच्छी बातें हैं। और जब वो पौधे ग्रो करते हैं, हमारे घर में हरियाली फैलती है, तो सच मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें पेड़ तो कम हो ही रहे, और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि उसके लिए हम इंसान ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि शायद पेड़ों की धरती थी ये, तो हम हैं जो कॉन्क्रीट जंगल्स बनाते जा रहे हैं, और फिर हम ही
0: बिल्कुल
1: शिकायत करते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, सोलर लेवल है, जो हीट लेवल है वो इतना बढ़ता जा रहा है, तो जिम्मेदार हम ही हैं। और अगर
0: बिल्कुल
1: हम
0: वो कहते
1: चाहें,
0: हैं ना कि जितना हम उनसे लेते हैं तो
1: हाँ,
0: उतना ही हमें देना भी
1: रिटर्न
0: पड़ता
1: करना
0: है।
1: चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और उतने लेवल पर अगर नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाइए, छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए, जिससे आप खुश हो सके, आपके आसपास हरियाली और खुशबू रह सके, आपके आसपास फ्रेशनेस रह सके। तो जी हाँ दोस्तों, बात चल रही है समर वेकेशंस की, नए नए आइडियाज़ इनोवेशंस की, तो आप भी हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम हमारे नंबर फिर से दोहरा रहे हैं, जो कि है 02912552300, और दूसरा नंबर है 2554300।

0: तो
1: विकास, जो अभी हम बात कर रहे थे समर वेकेशंस की, तो हम देख रहे हैं कि अभी बहुत लोग घूमने भी जा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और जैसा कि हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि जो चीज़ है, घूमने की जगहें हैं, वो बहुत लोग एक ही जगह पर पहुंच रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: अगर
0: सही
1: हम अलग
0: कहा।
1: अलग सेक्शंस में देखें तो सिर्फ नॉर्थ में ही लोग घूमने जा रहे हैं, अगर साउथ में भी जा रहे हैं तो एक ही जगह जा रहे हैं। तो वो देखने का अभी वो इतना चल रहा है ना कि कोई रह तो नहीं गया सब हाथों में।
0: बिल्कुल सही
1: हर
0: कहा आपने।
1: टूरिस्ट प्लेस के लिए यही चीज़ आ रही है, यही फैक्ट आ रहा है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि हमारा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है।
0: बिल्कुल, और साथ ही
1: सिर्फ
0: साथ हमारा जो
1: हाँ
0: श्रोताओं से क्वेश्चन है वो एक ये भी है कि आप समर वेकेशंस में जो है वो कहाँ कहाँ घूमना जो है वो पसंद कर सकते हैं, स्पेसिफिक काफ़ी ऐसे सारे रीज़न हैं जहाँ आप प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह घूम कर आए हैं या फिर घूमना चाहते हैं या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं हमारे इन नंबर्स पर जो कि है 0291-255-3300, और हमारे दूसरे नंबर है 0291-255-4300।
1: तो विकास, मैं ये बात कर रही थी कि हमारा जो इंडिया है वो इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर
0: जी
1: बहुत सारी डेस्टिनेशंस है घूमने की,
0: बिल्कुल
1: और इतनी नई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अलग अलग फोर्ट्स हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स हैं, इतना
0: एग्जैक्टली
1: आर्ट
0: बिल्कुल।
1: कल्चर इतना वाइड है।
0: अगर आप
1: तो
0: रीति अगर आप एक एक स्ट्रीट को भी अगर कवर करें तो भी आपको काफ़ी समय लग जाए, क्योंकि इतनी सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, या फिर जैसा कि अभी आपने बताया कि चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, या फिर हमारा वेस्ट ही क्यों ना हो, तो काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि बहुत ही प्यारी है।
1: अगर हम हमारे राजस्थान की भी बात करें
0: बिल्कुल
1: तो राजस्थान में भी सिर्फ कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बहुत फेमस है, जैसे जयपुर
0: बिल्कुल,
1: है, उदयपुर, हमारा जोधपुर खुद है।
0: जैसलमेर है।
1: हाँ, अब इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारी प्यारी जगहें हैं जहाँ पर घूम सकते
0: बिल्कुल
1: हैं, जैसे कि हम नवलगढ़ हो गया, फतेहपुर हो गया, यहाँ की पुरानी हवेलियाँ हो गई,
0: बिल्कुल,
1: और डेजर्ट
0: वहाँ
1: में
0: की
1: देख
0: जो कलाकृतियाँ हो गई, वहाँ का जो आर्ट हो गया है तो वो आपको देखने को मिलेगा।
1: हाँ, तो वैसे बहुत सारे ऐसे डेजर्ट वाली प्लेसेस है जैसलमेर के अलावा, जहाँ पर जाके
0: बिल्कुल
1: देख सकते हैं, डेजर्ट देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आप साउथ में जाओ, साउथ ऑफ राजस्थान जाओ, तो वहाँ पर राजसमंद है, और बहुत प्यारी प्यारी जगहें हैं जहाँ पर हम घूम कर नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए मंदिर, और
0: बिल्कुल
1: साथ में कल्चर हेरिटेज बहुत प्यारा है राजस्थान का भी। इसी के साथ देखा जाए तो दूसरे स्टेट्स हैं, उनमें भी बहुत
0: बिल्कुल,
1: सारी नई चीज़ें
0: चाहे
1: हैं।
0: वो उदयपुर हो या फिर जैसा कि अभी आपने बोला
1: हाँ
0: राजसमंद है, तो साथ ही साथ आपको भगवान के जो मंदिर के साथ साथ

0: जो है वो आपको ब्यूटीफुल नेचर के जो व्यूज है वो भी काफी सारे देखने को मिलेंगे।
1: हाँ, और साथ ही में ये चीज़ भी है कि ये तो सिर्फ राजस्थान की बात है,
0: बिल्कुल
1: अगर दूसरे स्टेट्स देखें तो उनमें भी बहुत कुछ है नया एक्सप्लोर करने को। वो सिर्फ आपकी सोशल मीडिया पे आने वाली दो तीन जगहें हैं जिनको आपने फिक्स कर लिया है कि यहाँ तो घूमने जाना ही है, ये हमारी टूरिस्ट लिस्ट में है, तो आप ज़रूर से समय निकाल कर समर वेकेशंस के अलावा जाइए, क्योंकि उस वक्त वो जगह बहुत खूबसूरत होती है। बस हाँ, अभी जो इतनी भी जगह है जो बहुत ओवर क्राउडेड है, उन्हें प्लीज़ और
0: बिल्कुल,
1: क्राउड में ना ले जाएँ, अपनी
0: और
1: डेस्टिनेशन चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा उसे और खूबसूरत बनाइए
0: पीसफुल
1: अपने।
0: प्लेस पर जो है वो जाना प्रीफर
1: हाँ
0: कीजिए, या फिर जहाँ पर आपको, कहते हैं ना कि काफ़ी सारी जगह ऐसी देखी हूँ मैंने दीदी, जहाँ का जो रास्ता होता है वो भी, कहते हैं ना, इतना ब्यूटीफुल होता है ना कि आप उसको बहुत अच्छी तरह, उस जर्नी को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि राजसमंद, जैसा कि आपने बोला, उसके नियर बाई में कुंभलगढ़ नाम का प्लेस है, तो बहुत ही प्यारा जगह है। साथ ही साथ जो है वो बारिश के मौसम में जो इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्यारा लगता है, वो कहते हैं कि वहाँ का जो फोर्ट है वो मेवाड़ की आंख बोला जाता है उसे, यानी कि इतनी हाइट पर है वो, जहाँ से पुराने समय में, यानी कि जब हमारा, अगर मैं पुराने इतिहास की बात करूँ, तो वहाँ पर जो राजा महाराजा होते थे वो उस किले से जो है वो पूरे मेवाड़ पर आंख, यानी कि नज़र रखा करते थे। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, यूनिक सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए।
1: बिल्कुल देखनी चाहिए, और साथ ही में जो क्वालिटी टाइम है जो हम हमारे फैमिली के साथ निकालना चाहते हैं, वो ट्रस्ट मी, वो ऐसी जगहों पे आता है जहाँ पर सिर्फ आप लोग हो। आप
0: बिल्कुल
1: बहुत क्राउडेड जगहों पे जाएंगे, अगर आप रिलीजियस जगहों को भी टूरिस्ट प्लेस समझने लग जाएंगे, तो वही पूरी दुनिया वही जा रही है। एटलीस्ट चूज समथिंग जो थोड़ा पीसफुल हो, जहाँ पर आप इंजॉय कर सके, जो सच में एक टूरिस्ट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप वहाँ जाइए। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये वाला गाना।

0: हमारे नंबर जो है वो श्रोताओ आप एक बार फिर से सुन लीजिए, जो कि है 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
1: और हाँ, अगर हिंदी में बताएं तो ये नंबर है हमारा 2553300 और दूसरा नंबर है 2554300।

दोस्तों, एक और नंबर हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, जो है कि 2553300, और दूसरा नंबर है 2554300। तो आप जल्दी से फ़ोन घुमाइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आपका फ़ोन नहीं आ रहा तो हम ऐसे ही बातें करते जाएंगे और हमारे नॉस्टैल्जिया में ही आपको घुमाते जाएंगे। तो जल्दी से फ़ोन घुमाइए और एंजॉय कीजिए नेक्स्ट ट्रैक।

0: तो लगता है रिद्धि हमारे जो श्रोता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए बात करते हैं हमारे कॉलर से।
1: हेलो विकास, आज ऐसा लग रहा है कि हमारा जो फोन है वो चाह रहा है कि आज हम ही बातें करें। ये जो छोटे छोटे ग्लिच आ रहे हैं ये बताता जा रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस बताओ हमारे श्रोताओं को, और आज की जो पूरी कॉन्वर्जेशन है आप ही लो। तो विकास, जब हम स्कूल में थे, लगता है हमारी लाइन कनेक्ट हो चुकी है, तो पर देखते हैं कौन जुड़ा हमारे साथ लाइन
0: हेलो,
1: में। हेलो हेलो हेलो,
0: लगता है किसी कारणवश जो है वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि रिद्धि आप बात कर रहे थे समर्स की, तो चलिए लगता है कि हमारे कॉलर जो है वो फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो,
1: कोई बात नहीं विकास, ऐसा बहुत बार होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कई बार हमसे दगाबाजी कर देती है, और ये जो दगाबाजी है वो लग रहा है कि आज अच्छी खासी चल रही है, और ये होना भी चाहिए कभी कभी। तो हमारे कॉलर

0: मुझे जुड़ तो रहे हैं, पर शायद किसी कारण उनसे बात नहीं हो पा रही है। हेलो हेलो। नहीं, आज फोन हमारा हमसे नाराज है। तो विकास, जैसा कि आज हम बात कर रहे थे स्कूल्स पे, समर वेकेशंस पे, और टेक्नोलॉजी का जो
1: बिल्कुल
0: अब इन्वॉल्वमेंट हो गया है, वेकेशंस पे
1: बिल्कुल
0: बाहर घूमने जाते हैं उस पे, तो आज का जो टाइम है, आज की जो जनरेशन है, आज जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अलग कॉर्पोरेट लाइफ अलग लेवल पे चल रही है, हम नींद
1: बिल्कुल
0: से उठते ऑफिस जाते हैं, वापस घर आके सो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी कहीं ना कहीं समर वेकेशन का ऑप्शन होना चाहिए?
1: बिल्कुल ऑफ कोर्स होना चाहिए कि जैसा कि अगर आप रेगुलर अपना जो है डेली रूटीन में जो है वो अपनी वर्क प्रोफेशन को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है संडे का दिन जो है वो कॉरपोरेट ऑफिसेज हो गए या काफ़ी जो दूसरे प्राइवेट ऑफिसेज हो गए या जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो, तो आप सभी को जो है वो एक प्लान बनाना चाहिए कि हाँ यार हम संडे को उस जगह पर जो है वो विजिटिंग करेंगे और साथ में एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। तो ये एक प्लान तो मेरा मानना है आपने सही बोला कि होना ही चाहिए, जिससे जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, साथ ही साथ में हमने देखा जो वर्किंग कल्चर के साथ में हमें जो प्रेशर हो वो बिल्कुल फील ना हो।
0: तो एक बार हम फिर से प्रयास करते हैं, हमारी लाइन पे कोई जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो नहीं, ये जो असफल प्रयास है इसके लिए हम माफी चाहते हैं। हम क्या बात कर रहे थे विकास, हमारे ऑफिस लाइफ की।
1: बिल्कुल
0: जो ये समर वेकेशंस का कॉन्सेप्ट है, मुझे भी ऐसा लगता है कि सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं है, लोगों को सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है, और साथ ही में जो एग्जॉशन होता है, मतलब आप कहीं से भी जाकर आएँ, कहीं से तो क्या ऑफिस से या वापस आए तो लगता है कि यार अब तो कुछ करने का मन ही नहीं है, मतलब कुछ होता ही नहीं, कुछ काम नहीं कर पा रहे, और वही होता है ना, लेथार्जिक सा फील होना कि अब तो बस नींद आ रही है। वो वाली चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मई या जून में एटलीस्ट एक वीक ऐसा होना चाहिए जिसमें हर कॉरपोरेट ऑफिस में छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो एक बचपन की हैप्पीनेस थी जब हम 2 महीने तक स्कूल नहीं जाते थे, और फिर कॉलेज में तो हम हमारे हिसाब से ही जाते थे कि चलो जाना है या नहीं, पर हाँ जब हमसे हम काम किए जा रहे हैं, हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो हाँ ये नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जितने भी बॉस हमें सुन रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप छुट्टी रखिए, और जो जितने भी कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, आप हंसी मजाक में ये आइडिया पिच कर सकते हैं कि सर हमें एक वीक की छुट्टी तो आप एटलीस्ट दे ही सकते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर मेंटल पीस। तो
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: और साथ ही साथ जो जो छुट्टी के साथ है वो आप विजिटिंग प्लेसेस पर जो है वो भी अपना, जैसे कि हमने बात करी कि अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, कि जो भी कलीग्स है वो आपस में भी जो है वो प्लान बना सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स हो गए उनके साथ में भी जो है, या फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो आप एक दिन ऐसा रखिए वीक में कि जहाँ पर आप जो है वो खुद को जो है वो अच्छा से अच्छा टाइम जो है दे सके और साथ ही साथ जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर सके, ताकि जो आपके आने वाले नेक्स्ट 6 डेज है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा, जहाँ पर आप प्रेशराइज फील ना करें कि नहीं यार मेरे को छुट्टी नहीं मिली। जैसे ऐसा कभी कभी माइंड में होता है ना कि यार मैं लगातार 20 दिन से 25 दिन से काम कर रहा हूँ, मेरे को रेस्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आदमी या फिर इंसान की अगर मैं बात करूँ तो वो स्ट्रेस में आने लगता है थोड़ा बहुत, कि हाँ यार उसके ऊपर वर्क प्रेशर आने लगता है, तो उस वर्क प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो है वो छुट्टियाँ बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है।
0: बिल्कुल विकास, इसके साथ हम आगे चलते हैं और एंजॉय करते हैं गाने, क्योंकि फोन में आज लग रहा है कोई इश्यू आ रहा
1: बिल्कुल
0: है, पर कोई ना, हमारी बातें भी सब सुन रहे होंगे और इसे एंजॉय कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ के एंजॉय करते हैं ये वाला ट्रैक।

0: विकास जहाँ आज बात चल रही है कि कल से 9 दफा स्टार्ट हो रहा है, पर ये
1: बिल्कुल
0: कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि हमारे जो राजस्थान के लोग हैं भाई, उनके लिए तो गर्मी एक बहुत अच्छे दोस्त की जैसी है। हमारे यहाँ के लोगों को गर्मी नहीं लगती भाई, उनको तो
1: बिल्कुल।
0: इंजॉयमेंट का मौका चाहिए। और साथ ही साथ में जो हमारे बड़े बुजुर्ग है,
1: और
0: हमारे
1: कुछ
0: यहाँ के
1: जो
0: जो,
1: यहाँ के लोग हैं वो आदि भी हो चुके हैं रिद्धि।
0: हाँ आदि हो चुके हैं, साथ में जो कल का जो दिन है वो और भी स्पेशल है, क्योंकि कल से
1: बिल्कुल
0: जो है हमारे राजस्थान का कुंभ यानी भोग शैली परिक्रमा स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी बहुत लोग आते हैं। हमारे शहर के भी बहुत सारे यंगस्टर्स और जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, कि जो पूरा रिलीजियस ट्रिप होता है, पूरा जो टूर है जहाँ पर अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, हर भगवान के दर्शन करके अलग अलग लोकेशंस पर जाके जो प्रॉपर भंडारा बनता है वो सारा, वो कहते हैं ना जोधपुर में एकदम गरम गरम खाना जी
1: बिल्कुल
0: वो
1: सही
0: वाली
1: कहा
0: चीज़।
1: आपने। और ये जो परिक्रमा है वो एक आस्था की परिक्रमा है, यानी कि जो कि हमारे जोधपुर में ही शुरू होकर जोधपुर में ही जो है वो खत्म हो जाती है। और लगभग ये परिक्रमा जो है वो 7 दिन तक चलती है रिद्धि, जहाँ पर जो भी हमारे ग्रामीण परिवेश के जो भी हमारे श्रद्धालु हो गए वो इसमें भारी संख्या में जो है वो भाग लेते हैं। और ऐसी बात नहीं, उनके साथ साथ जो भी हमारे युवा हो गए या फिर जो भी शहरी लोग हो गए वो भी इसमें जो है वो भाग ले सकते हैं, अगर जिसको भी

0: आस्था में जो है अपना एज ए श्रद्धालु जो है वो पार्टिसिपेट करने की जो है इच्छुक है, तो वो लोग भी जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जहाँ तक हम जानते हैं कि हमारे जोधपुर के रातानाड़ा वाले गणेश जी है, वो यहाँ से शुरू होता है, और काफ़ी प्राउडली कह सकते हैं कि इसका समापन भी हमारे जोधपुर के गंगश्याम जी के मंदिर में होता है। तो हाँ, अगर आपको भी लग रहा है कि आपको कुछ अलग ट्राई करना है, आपको एक प्रॉपर स्पिरिचुअल टूर लेना है, तो आप भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ये जब स्टार्ट होती है, तो हम अगर आप कल सुबह रातानाड़ा वाले एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी बसेज आपको मिलेगी जिसमें आप टिकट लेके जा सकते हैं, और अलग अलग लोकेशंस पे, और बहुत ही प्यारी लोकेशंस होती हैं हमारे यहाँ पे। तो आप हर मंदिर में जाओ, आपको एक नई कहानी मिल जाएगी, आपको एक नया हिस्ट्री का पन्ना मिल जाएगा, तो शायद आपको लगेगा कि ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, हमें पता क्यों नहीं था। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आ रहा है, आपको ये कुछ कुछ तो नया ट्राई करना है, तो आप ज़रूर से हमारे राजस्थान के कुंभ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस एक्सपीरियंस को और अच्छा बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो स्पिरिट होती है ना हम राजस्थानियों की, अरे गर्मी तो क्या है, हम तो कुछ भी सहन कर सकते हैं, ये बहुत रियल होती है। ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, हम लोग यहाँ के हैं, तो हम इस गर्मी के आदी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ रिद्धि हम लोगों की जो है वो प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो श्रद्धालुओं के लिए जो है वो सुचारू रूप से व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अपनाएं, और साथ ही साथ उनको जो भी तकलीफ़ हो रही है चाहे वो छोटे से छोटे किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, तो वो भी सुचारू रूप से जो है ताकि यातायात भी जो है वो बाधित ना हो और श्रद्धालु जो है वो अपनी परिक्रमा को भी जो है वो एन्जॉय कर
1: हाँ,
0: सके।
1: वैसे विकास हम इतने सालों में देख रहे हैं कि व्यवस्था बहुत ढंग से की होती है।
0: बिल्कुल
1: हम हर जगह देखते हैं कि जो हाइड्रेशन का फैसिलिटी है, पानी का,
0: बिल्कुल
1: छांव
0: बिल्कुल
1: का, पंखों का, और जो ट्रैफिक डेविएशन है वो भी बहुत परफेक्टली किया होता है। तो ये तो है कि हमारा प्रशासन इस पर काम कर रहा है, पर हाँ,
0: बिल्कुल
1: कहीं कहीं जगहों पर लगता है कि यहाँ थोड़ा और बेटर हो सकता था। तो इस साल उम्मीद है कि सब कुछ बहुत ही परफेक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ज़रूर से ये वाला जो साल का एक्सपीरियंस है भोगशली परिक्रमा का, वो हमारे जितने भी श्रद्धालु, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल टूर वाले लोग हैं, वो इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा है, तो आप ज़रूर से इसे ज्वाइन कीजिए, और एक नया एक्सपीरियंस अपने नाम कीजिए।

0: तो जैसा कि श्रोताओं अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भोगीशैल परिक्रमा की, तो हमने देखा है कि पिछले 8-10 दिनों में जो है अखबार के माध्यम से या फिर न्यूज़ के माध्यम से जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो है वो प्रशासन ने सुचारू व्यवस्थाएं कर भी रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि ताकि लोगों को और श्रद्धालुओं को जो है वो किसी भी तरीके की दिक्कत जो हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो महसूस ना हो।
1: तो जी हाँ श्रोताओं, हमारी भी यही आशा है कि ये जो भोगीशैल परिक्रमा है इसको आप काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस करें, और ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है, हर जगह नहीं होता है। तो आपके पास टाइम है और आपका मन है तो ज़रूर से इसे एक्सपीरियंस कीजिएगा। हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आज हमारी बातों से ही पूरा वक्त समाप्त हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी शाम का ये लास्ट ट्रैक।

तो दोस्तों आज जो है वो आपसे ढेर सारी बातें हुई समर वैकेशंस पर, और साथ ही साथ जो है वो भोगीशैल परिक्रमा के बारे में भी जो है वो हमने हमारे लिसनर्स को बताया कि किस तरीके से वो जो है वो इस परिक्रमा का एंजॉय ले सकते हैं।

0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, क्योंकि शाम के ठीक 5 बजे हैं और आज के इस माफ़ कीजिएगा कि शाम के ठीक 6 बज गए हैं और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। और आज के इस प्रोग्राम में जुड़े थे आपके साथ आपके दो रेडियो बडीज, यानी कि मैं विकास।
1: और मैं हूँ रिद्धि। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है विकास ने बहुत सारी बातें करके 1 घंटा पीछे चले गए, पर
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारी ऐसी आशा है कि अगले रविवार जो हमारे फ़ोन की नाराज़गी है वो ठीक हो जाएगी और आपसे ढेर सारी बातें होगी। हाल फिलहाल आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मौज मस्ती करते रहें और जो हमारे समर वेकेशन है उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिए। हाल फिलहाल दीजिए विदा।

आशा है कि अगले रविवार जो हमारे फ़ोन की नाराज़गी है वो ठीक हो जाएगी और आपसे ढेर सारी बातें होगी। हाल फिलहाल आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मौज मस्ती करते रहें और जो हमारे समर वेकेशन है उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। हाल फिलहाल दीजिए विदा,

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। शाम के 6 बजे हैं। आइए सुने पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमरीका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमरीका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: Madhya Pradesh, Vidarbha, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi during the next 5 days. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 564 10.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। श्रोताएं सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आइए पहले नजर डालें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय पर।

आज रात 10 बजे सुनेंगे रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे। सुगम संगीत सुनेंगे हमारे स्थानीय केंद्र से आज रात 9:15 पर। चौपाल कार्यक्रम सुनेंगे आज शाम 7 बजे और शाम 7:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम सिमाड़ी री गूंज का। फिल्म संगीत सुनेगा हमारे स्थानीय केंद्र से ही आज रात 8 बजे और रात 9:30 पर। श्रोताओं, ये थे हमारे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में जानकारी। आइए नजर डालें हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय पर।

कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के अंतर्गत माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म अलंकरण प्रदान समारोह का सीधा प्रसारण यह हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस। कल आप सुनेंगे छठा भाग।

लोक संगीत सुनवाएंगे हमारे सैन्य केंद्र से कल सुबह 10 बजे और दिन में 12 बजे। सुगम संगीत सुनेगा कल सुबह 10:30 पर और दिन में 12:30 पर और रात 9:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा कल दिन में 2:30 पर। कल आप सुनेंगे 1291वां भाग।

चौपाल सुनेंगे कल शाम में 7 बजे और शाम में 7 बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम सिमाडेरी गूंज। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी कल शाम 5 बजे। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 7 बजे और विभिन्न विषयों की रोचक जानकारियों से भरा मनोरंजक कार्यक्रम नमस्कार होगा कल सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर।

महिलाओं का अपना कार्यक्रम गणगौर होगा कल 1:15 पर। किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत होगा कल 1:05 पर। कल किसान भाई सुनेंगे गर्मियों में बागवानी कैसे करें पर चर्चा। फिल्म संगीत सुनेगा कल सुबह 6:45 पर, सुबह 11 बजे, रात 8 बजे और रात 9:30 पर और रात 10:30 पर।

श्रोता, ये थे हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में जानकारी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने देश गान।

अभी आपने समूह स्वरों में सुना देशगान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोता, इस समय शाम के 6:20 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे

0: मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता इस समय शाम के 6:30 हैं। आज सुने पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, शाम 6:42 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिल कर रहे हैं।
2: को जन आंदोलन बनाने की दिशा में होंगे कई कार्यक्रम। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से जल संग्रहण और संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। गंगा दशमी से शुरू हो रहा यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। इस अभियान को लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी जितेंद्र प्रधान से।
3: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
2: राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए हैं। नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी से उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे पर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच

0: व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के बालोतरा जिले में स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है, जो देश को रॉकेट्स लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स का कच्चा माल उपलब्ध करवाने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक होगा। केंद्रीय खान मंत्रालय की एक बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। इसके बाद श्री मेघवाल ने हमीरगढ़ रीको क्षेत्र में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यालय में उद्यमियों से संवाद किया। श्री मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में भीलवाड़ा में व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लागू करवाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ, उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों जीएटीसी की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में जीएटीसी वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया गया है। राणा पूंजा सभागार में आज आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीठ की विधिवत शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से स्थापित ये अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परम्परा और जीवन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर उच्च स्तरीय शोध और अकादमिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगी। फिट इंडिया मूवमेंट के संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली, योगाभ्यास सहित विभिन्न फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गई। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस मौके पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भाग लिया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, कोटपूतली, बहरोड, सलूम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। कई स्थानों पर योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इसमें जोड़कर योगाभ्यास, जूम्बा, रोप स्किपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और लू का असर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर में बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। चूरू में दिनभर लू चलने से लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोग तेज गर्मी से

0: बचाव के लिए कई जतन कर रहे हैं।
1: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रही हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने, धूल भरी हवाएं चलने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 26 और 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। वहीं 28 से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ क्षेत्रों में आंधी और कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। राजसमंद जिले के आमेट में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आमेट देवगढ़ स्टेट हाईवे पर मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। गंगा दशमी के अवसर पर शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में कई गतिविधियां होंगी। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पौधरोपण, श्रमदान और जल संरक्षण प्रदर्शनियां सहित अन्य आयोजन होंगे। शहरों से लेकर गांवों ढाणियों तक जन भागीदारी से कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में डूंगरपुर के 2 दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री शर्मा स्वच्छता सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के डूंगरपुर मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यहां लोगों ने स्वच्छता को जन उत्सव बनाया है। पूरे देश और प्रदेश में डूंगरपुर की स्वच्छता मुहिम की चर्चा है। रात्रि चौपाल के तहत मुख्यमंत्री जिले के 84 क्षेत्र की धम्बोला ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं की समस्याएं सुनी और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को टैबलेट वितरित किए। बालिकाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने धम्बोला के स्कूल में प्रयोगशाला बनाने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में तालाब संरक्षण के लिए 50 लाख रूपये की राशि देने की घोषणा की। जिले में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत जनभागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में इसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आदि सेवा केंद्रों के जरिए ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को अभियान से जोड़ने की बात कही। टीएडी उपायुक्त सत्यप्रकाश कसवा ने बताया कि इस अभियान में जिले के 638 गांवों में संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। वहीं आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स की मदद से जनजातीय क्षेत्रों में 17 विभागों से जुड़ी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य

0: विभाग की ओर से जिले में खाद्य सामग्री से जुड़े दुकानदारों से साफ सफाई रखने और मिलावटी सामान नहीं बेचने की अपील की जा रही है। सीएमएचओ डॉ अलंकार गुप्ता ने बताया कि जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दुकानदारों को शुद्ध और साफ सुथरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने के लिए पाबंद किया गया है। अभियान के तहत विभिन्न खाने पीने की चीजों के नमूने इकट्ठे कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जिले में पिछले दिनों ग्राम विकास रथों की रौनक देखी गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भीलुड़ा गांव में आयोजित ग्राम विकास रथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पिछले दिनों डूंगरपुर प्रवास पर रहे। राज्यपाल ने कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई की शहादत को याद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करने का आह्वान किया। जिले में पिछले दिनों कॉफी विद कलेक्टर संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद करते हुए जिला कलेक्टर ने उन्हें करियर मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने छात्राओं को अपडेट रहने और डिजिटल तकनीक सीखने के लिए प्रेरित किया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम में पिछले दिनों डूंगरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं हुई। जिला युवा अधिकारी शुभम पूर्बिया ने बताया कि समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। जिले में पिछले दिनों मंगल कलश यात्रा की धूम रही। गांवों और शहरों में निकली इन यात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। साथ ही उपखंड मुख्यालयों पर शिवालयों में विशेष कार्यक्रम रखे गए। ये मौका था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ये पर्व मनाया गया। इसमें शिवालयों में अभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। जिला स्तरीय स्वाभिमान पर्व कारोली गांव के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। जिले में जनगणना 2027 के तहत इन दिनों मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रगणक घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। 1 मई से शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया के तहत शुरुआती 15 दिनों में लोगों को स्वगणना का विकल्प दिया गया। इस अवधि में इच्छुक नागरिकों ने खुद ही अपने परिवार और मकान से जुड़ा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपे से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रदेश में कालेओं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरुआत वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 माय खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकार री ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश रा घनकरा हल्का माय करड़ी गर्मी और लू रो असर बण्योड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार ने। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रदेश में कालेऊ जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन कानी महत्व मान्या जा रिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री शुरुआत वेला। गंगा दशमियों सरुवेरियो ओ अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ताई चालेला। और ब्यूरो साथे समाचार कक्षों मारा सहयोगी जितेंद्र प्रधान।
2: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों

0: तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
1: राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया है। ये नीति रे तहत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जाऊन वाली बत्तियों बत्ती सब्सिडी ने 50 लाख रुपयों बधार 1 करोड़ रुपया कर दी जा है। मुख्यमंत्री राज्य बजट 2026-27 रे तहत रोकड़ और विनियोग विधेयक माथे चर्चा रे दौरान ई बारा में ऐलान करियो हो। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना बतायो के तकनीकी अपग्रेडेशन माथे दिया जाने वाली सब्सिडी बधावणु प्रदेश रा उद्योग वैश्विक दौड़ मुजब आधुनिक तकनीक ने अपना सकेला, इणु उत्पादन बूतो बधन रे साथे साथे गुणवत्ता में सुधार वेला। इणरे साथ ही स्थानीय उत्पादन ने बधावो देवण सारू एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में 2 महत्वपूर्ण बदलाव करी जा है। इणरे तहत रत्नाभूषण उत्पादों जुड़िया कारोबारा रा फैलाव माथे मार्जिन मनी सब्सिडी दी जायला, साथ ही निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन वह सकेला। उद्योग महकमा कानियों काडीजी अधिसूचना मुजब सूक्ष्म इकाइया ने 20 लाख रुपया और लघु श्रेणी री इकाइया ने 15 लाख रुपया तारी मार्जिन सब्सिडी मिल सकेला। वठे निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू 5 लाख रुपया री सब्सिडी दी जायला। अमेरिका रा विदेश मंत्री मार्को रूबियो रे काले जयपुर आउन रो कार्यक्रम है। वे आमेर मेल देखेला। श्री रूबियो रा दौरा ने लेर जिला प्रशासन और पुलिस कानियों तगड़ी तैयारियां करी जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री री ई यात्रा ने भारत और अमेरिका रे बीच सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक संबंधों जोड़ने देखो जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन रा भारत प्रवास माथे है। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिलिया। हैदराबाद हाउस में भी बतल में आथुनी एशिया संकट पैदा मौजूदा हालात और हिफाजती मदद माथे बतल करी जी। इन रे पछे डॉक्टर जयशंकर कहो के भारत और अमेरिका रे बीच गहरा वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों रा संबंधों पूरी दुनिया माथे असर पड़ियो है। वणा कहो के बतल रो सिलसिलो चालतो रहेला और इन रा चोखा नतीजा मिलन री आस है। बालोतरा जिलारी रिफाइनरी जैसी महत्व परियोजनाओं देश री ऊर्जा हिफाजत रे साथ सामरिक और माली हिफाजत में महत्व भूमिका निभा रियो है। अठे सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजारो भंडार मिलियो है जो देश ने रॉकेटों लेर न्यूक्लियर प्लांट्स रा कच्चा माल उपलब्ध करावण और साफ ऊर्जा रा हल्का माय अगाड़ी बढ़ावण में मदद करेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स और सिवाना ग्रेनाइट में रियर अर्थ एलिमेंट और हेवी रियर अर्थ एलिमेंट मिलिया है। वना एहलकारा ने निर्देश दिया कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स रा असरदार क्रियान्वयन सारू प्रदेश में नोडल एहलकार नियुक्त कराया जावे जिनो काम में तेजी आ सके। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज भीलवाड़ा रा दौरा माथे रिया जठे वना हमीरगढ़ हवाई पट्टी रो जायजो लियो। इन रे पछे श्री मेघवाल हमीरगढ़ रिको हल्का माय भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन रा दफ्तर माय कारोबारियों बतल करी। श्री मेघवाल खबर नवीसा ने बतल माय भीलवाड़ा माय कारोबारी उड़ान शुरू करने रा प्रस्ताव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सामे राखण रो भरोसो दियो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रो जिक्रो करता वणा कहो के इन लागू करनो केंद्र सरकार री ठावी प्राथमिकता है।
2: नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ उसको लागू करने का ही अवसर था क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
1: केंद्र सरकार वजन और मापरी जांच प्रणाली ने मजबूत करण सारू जांच केंद्र GATC री भूमिका रो पसारो करेला। इस सारू साल 2013 रा कायदा माय बदलाव करी जो है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय आ जानकारी देवता बतायो के नुआ कानूना माय GATC वजन और मापरी 23 श्रेणिया रो सत्यापन कर सकेला। इन माय पेट्रोल डीजल CNG एलपीजी

0: एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच ही भेली है। ई पहल रो मकसद कारोबार ने साफ गोई बनावणो और तकनीक ने बढ़ावो देवणो है। बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ री शुरूआत करी जी है। राणा पुंजा सभागार में आज भी एक कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी पीठ री विधिपूर्ण शुरूआत करी। श्री देवनानी कहो कि विश्वविद्यालय कान्यू स्थापित आ अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा एकात्म मानववाद अंत्योदय ग्राम विकास सामाजिक समरसता और सामाजिक जीवन मूल्य माथे आधारित राष्ट्र निर्माण जैसा मुद्दा माथे आला दर्जा रो शोध और अकादमिक गतिविधियां रो खास केंद्र बनेला। फिट इंडिया मूवमेंट रे तहत संडे ऑन साइकिल रे तहत प्रदेश रा न्यारा न्यारा ठोड़ा साइकिल रैली योग अभ्यास समेत न्यारा न्यारा फिटनेस गतिविधियां भी। न्यारी न्यारी ठोड़ा अहलकारा खिलाड़िया नौजवाना और फिटनेस प्रेमिया उमावरे साथ ई मुहिम में हिस्सो लियो। ई मौके जयपुर एसएमएस स्टेडियम रा चारों मेर साइकिल रैली भी। लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली रे प्रति जाग जगावन सारू ओ आयोजन भी हो। हनुमानगढ़ जैसलमेर राजसमंद कोटपुतली बहरोड सलूम्बर बालोतरा झुंझुनू और पाली माई साइकिल रैली री मार्फत लोगों ने स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक रहन रो संदेश दे रिजियो। कई ठोड़ा योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम ने इणो जोड़ ने योगा अभ्यास जुम्बा रोप स्किपिंग समेत दूजी गतिविधियां भी। अबे मौसम प्रदेश रा घणकरा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनियोड़ो है। मौसम केंद्र जयपुर आज 18 जिला माए हीट वेव रो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है। राजधानी जयपुर माए आज दिन माए तेज तावड़ा माए आम जिंदगी माथे असर पड़ियो। जैसलमेर माए आंधी चालणो लोगों ने गर्मियों थोड़ो आराम मिलियो। चूरू माए आखे दिन लू चालती रहवणो लोगों रा काम काज माथे असर पड़ियो। बाड़मेरू हमारा खबर नवीश बतायो कि वठे लोग करड़ी गर्मियों बचन सारू कई जतन कर रिया है।
1: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी आकाशवाणी समाचार बाड़मेर।
0: मौसम महकमो आवता 3-4 दिन राजेरा घणकरा हल्का माए मौसम साफ रेवण एर धूल भरी हवा चालण तापमान माए 2-3 डिग्री सेल्सियस री बढ़वार री आस जताई है। 26-27 महीने आथुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए बत्ती रो तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होवण और कठे कठे लू चालण री आस जताई है। वठे 28-29 मई एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर प्रदेश रा कुछ हल्का माए आंधी और कठे कठे बिरकाहुण री आस जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणियों हर महीना प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने आप रा विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। ई सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-11-7800 माथे 29 मई तय आप रा राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फत ही आप विचार भेज सको हो। न अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरो सुन ले रहो। प्रदेश माए काल्यों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 माए खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकारी ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश रा घणकरा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनियोड़ो है। आपता कुछ दिन राहत रा आसार नी। नेंडर साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

मीडियम वेब 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए सुने हमारा दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनने वाला सगला हेताड़ू श्रोताओं ने घने मानसो गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा रा
0: राम राम। दीनदयाल भाई तावड़ो पड़े है,
1: तावड़ो जोर पड़े है गुरविंदर भाई।
0: आज की तपत है आ भाई, दोपहर में अगर कोई भूखे पेट घरों निकल जा कोई अर्जेंट काम हो तो लूरो जको है उएरी चपेट में आ सके। इन वास्ते आप जितना भी आपना श्रोता है, चाहे गांव में रहे, कस्बे में रहे, शहर रे मायने रहे, बुलावन आ है कि भाई इन तावड़े री तपत रे मायने घरों बारे कोई काम वास्ते निकलो तो हल्को भोजन करो, कटई कोई पेय पदार्थ है तो उएरो भी उपयोग करो, और हाथे हाथे पानी री व्यवस्था यानी पानी री दीड़ी जकी है वह करने राखो।
1: बिल्कुल बहुत जरूरी है गुरविंदर भाई, पानी रो तो विशेष रूप से ध्यान रखनो, और बाकी भी जी का शीतल पेय पदार्थ है अपना देशी तरीके रा, जो नींबू री शिकंजी हुई, छाछ हुई, राबड़ी हुई है नी, दावो हुयो, ए चीजा रो भरपूर प्रयोग करनो छे। जे अबार तो नींबू पानी, केरी पानी, पनो बनायडो, ए सब चीजा रो प्रयोग कराला तो निश्चित रूप से आप लू सु बचियोड़ा रे माला।
0: बिल्कुल, और हम देखो शहर रे महीने, कस्बा रे महीने, हड़क किनारे मतीरा नारियल रो पानी।
1: हाँ,
0: पहला आज 10-20 साल पहला मारवाड़ में नारियल पानी तो भाई देख नहीं, कोई नहीं मिलतो, और कोई हारी बीमारी में डॉक्टर कहे तो ये ने नारियल रो पानी पाओ तो बड़ा फोड़ा पड़ता। अब कई ऊंचको है वो पानी की
1: व्यवस्था होती है।
0: हमें तो कस्बा में गांव में भी नारियल पानी होगी, और मतीरे रही हमें कहीं फटाफट जूस बना दे दे गिलास। हाँ, पर
1: जूस ही बनावे गुरविंदर भाई, आजकल तो मतीरा भी कई तरीके रहा आ गया,
0: बिना बीज
1: उन्नत उन्नत किस्म आएगी बहनी कई तरह री है नी। आजकल बेधारीदार मतीरा तो अब कम ही जोएगा, दीकन वाला जी का ने किरण क्या होता।
0: बिल्कुल, हमें देखो के गांव रे मायने जका बरसाती फसल रे मायने जका मतीरा उगता नी।
1: हाँ,
0: उरे मायने जकी गिर है बाद या तो सफेद होती है, हल्की पीली होती है, हल्की गुलाबी होती है,
1: हल्की गुलाबी। हाँ,
0: एड़ी राती एकदम लाल चुट वेड़ तो भाई कही है ला दीनदयाल भाई, डर भी लागे के कठई आ जकी फसल इंजेक्शन तो नहीं पकायोड़ी, या ये रे माते कोई रंग रो छिड़काव तो नहीं कर दियो।
1: हाँ गुरिंदर भाई, अड़ी बात वास्तव मायने कई बार देखने सुनने मिले, सोशल मीडिया माते भी आप देखा कि भाई कई जना जो है इंजेक्शन लगान, क्योंकि आज की मिठास है नी इरमायने, इतनी जोरदार मिठास तो आप कदी ना तो देखी ना सुनी, तो ऐडी स्थिति रमायने वास्तव में डर लागे कि भाई ऐस काम जी का है, कोई गलत तरीका तो ओपत नहीं ली जा रही है फसल री।

0: बिल्कुल देखो कि भाई ए जो की है मतगरेरा बीज ए हाइब्रिड बीज है और आनी फसल है जो की बा हुए भी ज्यादा है मतीरा भी मोटा हुए ये में भी चाइनीज मतीरा भी आउन लाग गया।
1: आई गेस सर।
0: तो अगर मान लो मतीरन पहले तो पानी मेलोन पचा अगर मान लो कटी सक वे नी तो माते धोड़ो कपड़ो रगड़ देख लो भाई वो रंग उतरे तो को नहीं यारो।
1: हाँ, आप बात बढ़िया बताई, क्योंकि जानकारी रखनी जरूरी है और सावधानी भी बहुत जरूरी है।
0: तो फल कहीं है कि जितो फूट रो दिखे नहीं उतो ही उए में बेम पड़े और जो प्राकृतिक रूप में पा केड़ो वे वो थोड़ो उमे जो की सुंदरता रो वो कम हुए नहीं तो आदमी देखे नहीं और ले।
1: सही है।
0: लेकिन हमें अगर आज रे युग रे मायने आपा देखा तो भारत रे मायने लाला 20-30 सालों जो को कृषि अनुसंधान हुयो है बीज अनुसंधान हुयो है रिसर्च हुयो है एग्रीकल्चर में वे में लगभग हर फसल जकी है वे में बदलाव आपा महसूस कर सका। खास तौर माते पश्चिमी राजस्थान में जकी पीढ़ी हुलक बाजरी होती
1: हाँ,
0: बा में वो बाजरी रो बीज ही होड़े होड़े खत्म हो गयो
1: अबे तो फिर मान थोड़ा साउंड तो रंग अलग आवे।
0: हाइब्रिड हो गयो। पहला रोटी बनावता बाजरी जकी सुनहरी बनती नम्मे बा देखो काली बने।
1: कालू तो बना। हाँ,
0: तो
1: बिल्कुल
0: कहो
1: सही है।
0: मतलब है आपने खान पान रे मायने भाई बहुत बदलाव आयो है इन खान पान रे बदलाव सीधो सीधो असर जो को है शरीर माते भी पड़े।
1: बिल्कुल पड़े, और सीधो असर जी को है गुरुंदर भाई वो

0: कई बार बहुत तकलीफदायक होया करे। अड़ी स्थिति रे मायने आपा जी को देखा कि भाई किन तरीका सु आपा ने जीवन जीवनो चाहिए और आपा ऑर्गेनिक या स्वस्थ रूप में भोजन कर सका, तो उन्हीं व्यवस्था आपा ने करनी पड़ेला। क्योंकि आजकल देखा आपा के भाई यूरिया रोन कई तरह रा दूसरा पेस्टिसाइड्स रो इतो जबरदस्त इस्तेमाल हो रही है खेता रे मायने के थोड़ा टाइम तो फसल मिले बढ़िया और बाद रे मायने जी को है बा जमीन पूरी रे पूरी वो खेती बंजर पड़ जावे।
1: बिल्कुल भाई, लोग देखो आउनालो टाइम जो है वो विकास रो है, नए तौर तरीका अपनाउन रो है। आपा शहर में देखा लोग जका है छोटी छोटी बागवानी करे, शहर कहीं गांव रे और कस्बा रे में नहीं, थोड़ी बहुत जगह जटे है, पानी री व्यवस्था है, उठे खोडो दो खोडो आप रे हिसाब सब्जी उगावे, काचर है अमजू भिंडी उगावे नहीं।
0: बिल्कुल,
1: और किरी मान लो फलदार वृक्ष लागोड़ा है, आम है, पपीता है, अमरूद है, चीकू है, जामुन है, ए भाई घना ही हुए, बस खाली थाने काम ही तो ही करनो है कि अच्छी उन्नत किस्म रो एक दरखत लगाउनो है। पछे उ में न तो कोई पेस्टिसाइड न कोई बात, आप रे जके घरे आगे उगाओ नहीं तो जो घर कचरो है वो खाडे में खोद बूर दो, पछे उरी खाद बने जकी उ में डाल दो।
0: बिल्कुल, ऑर्गेनिक खाद इरमाइन काम आ जाए और केंचुआ वाली खाद भी जी की है बहुत काम आया करे। दरअसल कई बार अपने कार्यक्रम में आपा भी चर्चा करा और बाकी कई तरह का ऐप है गुरविंदर भाई जी का माते कृषि संबंधी सुझाव जी का है किसान भाइयों ने दिया करे, तो उन माध्यम से पता चले कि भाई आपा घर रहे साग सब्जी रोज को छिलका है, कचरो है, बाकी इन तरह की चीजें हैं बने दी, अब गड्ढो खोदन नेकदा उरमाने और साथ उरमाने थोड़ा केचवा डालना तो इनो जी को है संवर्धन होते रहे एक उन्नत खाद रे रूप रे मायने और बा खाद जी की आपने बिना नुकसान करिया आपकी फसल ने जी को है सुरक्षित भी रखे और बढ़िया उपज देवे।
1: भाई पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर की बात करा तो फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल रो एक रूप ही है और बड़ा बड़ा उत्पाद है, आपने जितो ही वो फर्टिलाइजर है बारों मंगावनो पड़े एक बहुत मोटो हिस्सो, तो आपने जकी भारतीय मुद्रा है बात देनी पड़े।
0: बिल्कुल,
1: तो आप इन केमिकल इन फर्टिलाइजर जब है इनू अगर आप देसी तौर तरीके माते आ जावा तो आपनी फसल भी चौकी वेन, आपने फायदो खुद नहीं वेन देश नहीं हुए।
0: बिल्कुल सही बात है और फायदो भी दो तरह रहे गुरुंदर भाई, एक तो आर्थिक रूप से फायदो हुए और दूसरा सबू मोटी जी की बात है वो स्वास्थ्य दृष्टि में बात करा आपा, शारीरिक स्वास्थ्य रे हिसाब में यदि बात करा आपा तो निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ो फायदो इन मायने देखने वास्ते मिले।
1: बिल्कुल, स्वस्थ भादर जो की स्वस्थ भारत री जो की आधारशिला है वह स्वस्थ सोच, स्वस्थ जो को विकास है उन मुझे भी हुई आपा जितना भी प्राकृतिक चीजा है बारो संरक्षण करा। देखो भाई के अगर आपनो शरीर चोखो रहे,
0: बिल्कुल
1: आप खेल रे महीने आगे बढ़ान, कटे आप होना नहीं ओलंपिक उगियोन, कटे कोई राष्ट्रमंडल खेल हो यार, कटे की हुई एशियाड हुए, तो उए में भारतीय जका ग्रामीण क्षेत्र का युवा है बे आप बड़ो यू लोहो मनवार यार लाल ले। देखो देखते देखते जका पदक तालिका ये रे महीने लगातार संख्या बढ़ती जा रही है।
0: और गुरिंदर भाई आप अबार एक नाम लियो राष्ट्रमंडल खेलारो है ने, तो आज राष्ट्रमंडल से जुड़ियोड़ो एक विशेष दिन है, आज है राष्ट्रमंडल दिवस।
1: कई दिवस है वो
0: 24 मई ने मनाई जा करे सा राष्ट्रमंडल दिवस और राष्ट्रमंडल रा जिका सदस्य 56 देश है जिकार मायने भारत भी एक है, तो वे देशा रो एक संगठन है और ए देशा रे उन्नति रे भाव रे रूप में देखा आपा तो और मायने चर्चा होया करे और पूरी योजना बनिया करे।
1: कटे न कटे राष्ट्रमंडल देश बे तो कोनी जका आपा रानी रे इंग्लैंड री रानी रे अधीन आवता।
0: बिल्कुल सा बिल्कुल बेज है,
1: तो सन 1947 पहला जका अंग्रेजी हुकूमत रे अधीन जका देश हा देश आप मिलन आजादी रे बाद राष्ट्रमंडल बनायो। और देखो के थे किता देश बताया वो में
0: 56 देश
1: अगर आपा आर्थिक विकास री सूची माते नजर डाला तो कठे न कठे भारत जो है पूरी दुनिया में वो एहसास करा रही है कि आउन वाली टाइम री उभरती हुई ताकत भारत री है।
0: बिल्कुल,
1: राष्ट्रमंडल रे मायने जका भाई दीनदयाल 56 देश बताया बाने अगर आप विगतवार देखा बाणी प्रगति देखा तो कठे न कठे जकी आपानी अर्थव्यवस्था है वह अग्रणी है।
0: बिल्कुल है, और आपा जी की है विश्वरी आज यदि अर्थव्यवस्था की बात करा तो महान ताकत रे रूप में आपा उभरता जा रहा है। कोई टाइम रे मायने आपनो नंबर घणो ला रहे हो, आपा पांचवा माते आया, चौथा माते आया और अबे आपा विश्वरी जी की है टॉप 3 व्यवस्था मायने आउन री तैयारी माते हाँ।

0: देखो भाई लोग, एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी,
1: बिल्कुल सर,
0: अरबा कंपनी, ओले ओले इन भारत रे पूरे क्षेत्र ने आप रे अधीन कर लियो और अंग्रेजी साम्राज्यवाद अठे फल
1: फैलायो
0: फैलाए, और अंग्रेजारी लगभग 200 साल री गुलामी रे बाद आपाने आजादी मिली। तो जको ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, मैं कटे पढ़ियो के भारतीय लोग जका है वे आप रे जकी अंतस मंदरी जकी भावना है वो इन्हें बरसों बरस उजागर नहीं करे। और आज की ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत ने गुलाम बनाउन रो पग रखियो, आज उए रो जो को मालिक है वो भारतीय मूल रो आदमी है। तो
1: कई
0: कठे
1: बात
0: न कठे आपा वो जिन दिन ईस्ट इंडिया

0: कंपनी रो अध्यक्ष बनायो नी, तो उगेर नीचे वो लिखेड़ो वो कहीं अंग्रेजी रो मोटो अखबार है इंग्लैंड रो, के
1: हाँ
0: ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे माते हुकूमत करी और आज उन कंपनी माते भारतीय मूल रो आदमी जो को है अध्यक्ष बनन हुकूमत कर रही हो। तो कठे न कठे और जो को है आपने विकास री गंगा में हाथ अगर आप देखा
1: बिल्कुल।
0: तो शिक्षा और व्यापार दोनों रो बहुत बड़ो योगदान है।
1: और शिक्षा तो बहुत जरूरी है गुरेंद्र भाई, क्योंकि शिक्षा रे साथ ही व्यक्ति जी को है आपरा बंद दरवाजा जी का है किस्मत रा बे खोल सके है, और शिक्षा ही एकमात्र उपाय है व्यक्ति री तरक्की रो।
0: भाई लोगा अगर शिक्षा नहीं ली तो भेड़ बकरी रे समान आपरो जीवन वे जीव बकरियां टोले जी थाने कोई भी तोड़ सके न किनी खाडे रे महीने नाक सके।
1: बिल्कुल। और बात करा गुरविंदर भाई थे भेड़ बकरी की बात लाए, आज मन लागे थे यूं किन की हिंट दे रिया हो बात माते
0: कहीं
1: बात
0: कि
1: लाल।
0: आज बकरिया रही कोई दिन है
1: हाँ
0: ओ
1: बिल्कुल है सा, आज मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और मारखोर एक तरह री जंगली प्रजाति है गुरविंदर भाई, बकरी री जिकारा सिंगड़ा जिका है नी वे थोड़ा घुमावदार होया करे, और दुनिया री सबों बड़ी जंगली बकरी रे रूप में आ प्रजाति जी की है जानी जिया करे, सर्पिला कार इरा सिंगड़ा होया करे, और विशेष रूप से जिका दक्षिण एशिया रा मध्य एशिया रा पर्वतीय क्षेत्र है नी, जो भारत होयो अफगानिस्तान होयो पाकिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ए जगहों माते आ विशेष रूप सूझी को है पाई जिया करे।
0: भाई लोगा जो कि आ बकरी है आ पर्वतीय क्षेत्र में पावे हमें आ कहीं है लगातार ये रो शिकार हो रही है या ये रे जो को है ये संख्या कम हो रही, तो कठिन कटे ये रे संरक्षण भी बहुत जरूरत है। इन वास्ते ही वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावे। आया प्रजाति जो कि दुर्लभ प्रजाति है, दीनदयाल
1: बिल्कुल सर।
0: भाई चार पग है उर मायने खुर है और वहां खुरों आ उबे चट्टान चढ़ जावे
1: हाँ
0: जिन तरह आ भाकरा माते चढ़े कूदे खेले उन्हें देखन आश्चर्य वह के किकरा बैलेंस बना रही है न उबे भाकर चढ़ रही है।
1: बिल्कुल, आ एक बहुत बड़ी बात है, और वास्तव में मायने बकरियां री आप स्थितियां यदि देखा। एक और बात है गुरुंदर भाई, ए बकरियां जी की चरती टाइम है नहीं कई तरह री आपने देसी जी की घास चरते चरते साथे साथे कई तरह री जड़ी बूटियां हैं जिकारो सेवन करे है नी, तो और उन कारण एण मायने जी की आ इन तरह री कोई ताकत आवे विशेष रूप से, और इन वास्ते यो दूध भी जी को है बहुत कारगर मानी जाया करे।
0: दीनदयाल भाई देखो के इन धरार इन धरती माते असंख्य जीव है उन जीवों में वो एक जीव है मारखोर बकरी और इवोलेटोन धीरे धीरे हजारों साल में इन तरह बाद जंगली पर्वतीय क्षेत्र में अपने आप री प्रजाति ने बचावते थके आगे बढ़िए और आपरो संतुलन और आपरो मस्तिष्क और वह जिन पगरे खुर रखे नी तो
1: हाँ
0: कटे न कटे उन्हें उन बात रो अंदाजो है कि अठो ने तो मैं खुरू स्लिप और नीचे पड़ू और जो को एलेंस बनावे वो बरसों री बरस संघर्ष के बाद उइर में आ ताकत उत्पन्न हुई है।
1: उत्पन्न
0: तो
1: हुई है
0: आपनों भी फर्ज है कि इन प्रजाति ने आपन लुप्त नहीं होने दा।
1: बिल्कुल, और इन जागरूकता वास्ते जी को है आ बात विशेष रूप से वो दिन मनाई जाया करे गुरविंदर भाई।

0: और हमें दीनदयाल भाई अथई गणी उगी इन कार्यक्रम रो बगत और यो है पूरो
1: बिल्कुल सा,
0: तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा ने दिराओ सीख,
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता भी आप सुन रहे थे चौपाल कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 7:30 और आप सभी को इंतजार कार्यक्रम सिमाडेरी गूंज का। आइए सुने कार्यक्रम सिमाडेरी गूंज।

0: Naulobo? Oh, Naulobo!
1: भांडक ओडाड़ियोड़ी है खोल लावड़ा
0: कट्टे ओडाड़ियोड़ी है
1: अरे बस को कोई ताला जड़िया कौन मैं आवरी कन कौन है भाई
0: हां हूं सा दोरी गणी खुले फाटक
1: हां दोरी गणी का खुले कोई क्या चूड़िया क्या काट थोड़ी होया
0: जने
1: अरे हूं कल पीनु तो है जो साफ सफाई करे ये दम होरी खुले धको देवते हां
0: अबे खुली
1: हां खुली
0: आई सा राम राम सा
1: राम राम कमरिए में आवरी भाई
0: हां
1: तावड़े तपी आई है कम नाम भाई थारू भूल को पात्र
0: नीलम
1: हुजे कम है ओ नीलम थी थी थी ओ नीलम भाई गुजरात आ रही
0: हाँ सर सही और क्या
1: समझ गो भाई और कई दिन आई भाई है जगह एक बार आई तो मारी जी हो रो यो भाई नीलम थारे तो क्या गुजरात में आम्बा मीठा
0: हाँ सर केसर आम्बा है
1: अरे
0: पेटी लाई हुनी
1: वाह वाह वाह वाह तो बढ़िया करी भाई हूं तो मन में विचार के मारता तो आकड़े जगह लागे नी है जो अंबा जड़े ही है देखो भाई बस देखो देख देख हम बढ़िया राकान कह भाई अंबो खाओ अंबो खाओ
0: जी नहीं
1: नहीं सर खा लो मारत कह नहीं आकड़े रो दू देड़ो सड़ जा मैं जी को कह हाथों हाथ पुराण पंखे उठ जा
0: नहीं नहीं अड़ा काम नहीं करना
1: तावड़ कर देखे कुदरत रा खेल है अरे अंबा ये है जी को कह नहीं आकड़ा रे कह डोडिया रे जड़ा जड़ा है एक खारो ने एक मीठो
0: नहीं ए घना ही मीठा है
1: हां मीठा है तो बा भाई
0: एन ए माडे पकोड़ा को नहीं है
1: दाल पकोड़ा है
0: दाल पकोड़ा है
1: वाह वाह भाई देखो थारे सुपिता है थारे कर्म है जिन थे मीठा अंबा जी मोनी में बा ठीक है मैं धुरा धरती में बैठा हान कह तो कह नहीं के भाई मारे अटे तो कह खेजड़िया है खोगड़ा है आगड़ा है कैलड़ा है जी मारा थारे है जो कह नहीं मीठा मीठा थारा
0: यूं
1: वाके कौन भाई मतलब कह नहीं के बो कह कर्मरी बात है और दावड़ियों करो पड़े भाई मैं तो कह नहीं अटे तो ही थे भी
0: ओ कह नहीं नौ तपो हरु वियो है
1: हाँ तो वो ही पर काले हूँ वो ही हरु पर आज ही तपियो कम कौन घड़ी तपियो बड़ा है भाई देखो डॉक्टर बैद कह कह उन्हें हिसाब हूँ तो हलो तो कह नहीं भाई देखो काया ने कोई तकबील नहीं वेला नहीं तो भाई कहूँ किन टाइम कहूँ हो जा कोई लूर लपर तो लू जरावनी इन पर
0: नींबू पानी अम्बल वाणो पीना
1: हाँ पिया भाई ठीक है ठंडो पानी मटकी पीऊ भाई छोकी देखे के मैं बात है कटी तो तावड़ो पड़े कटी है जो कह मे वे कटी कई रे कई वे न्यारा न्यारा देश सारी न्यारी न्यारी बात
0: है कोई सही बात
1: अपने आप देश में कटी तो तावड़ो पड़े कटी भी है जो कह नहीं कहा उत्तराध भाकरम बर्फ पड़े जे टाइम मिन जावे अनु तई ओ हो भाई देखे मात बर्फ पे आला है जी जाओ
0: सही बात
1: खैर के जावे दूजो कौन है आज कोई खास बात है तो बताओ भाई
0: आज है राष्ट्रमंडल दिवस
1: हाँ
0: और है माखोर रो अंतर्राष्ट्रीय दिवस
1: हाँ
0: और माखोर कहीं अठा है
1: माखोर कौन है
0: आ है एक जंगली बकरी रो नाम
1: ओ बकरी है नी
0: हाँ
1: जंगली
0: जंगली बकरी
1: हाँ अपर अटे जीव है जी को कह नहीं कई रिंद रोई ना जिन्ना हो रहे जीव जीव हेली वेजड़ी हो यो।

0: वाह भाई ये बात निहाल कर दिया हम फटोफट विगत बार बताओ
1: हाँ
0: और आज हुरजवार है जो गेल मेली अयोड़ा है कगदी बांचना है
1: हाँ
0: कुन जलमियान कुन फोत होया
1: हाँ
0: फटोफट बताओ।
1: आज ऐसा काजी नजरुल रो जन्मदिन ए बांग्लादेश रा कवि लेखक संगीतकार हा और पचे है बचेंद्री पाल जकरो आज जन्मदिन है।
0: बचेंद्री पाल का नाम हुई भाई
1: हाँ ए माउंट एवरेस्ट माथे चढ़न वाली पहली महिला
0: क्या है भैया लुगी जात है जो
1: हिमालय
0: मा चढ़ी 8,888 मीटर है
1: ऊंचाई
0: हाँ उठ पूगी बाबा दिन दिन है देखो गहरे ऐडी क्या हिम्मत वाली लुगी ने कोई नहीं भूल सके
1: सही बात
0: आ रहा भगवान हजरत हजरा कहने भले क्या नहीं भागर मा चढ़ता रहे उतरता रहे भले।
1: रंजन मधाई ए भारतीय सिविल सेवक है जो को पूर्व भारतीय विदेश सचिव और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त रियोड़ा है।
0: हाँ तो देश की आजादी मिली उन टाइम रहा
1: हाँ सर
0: जो का काम करिया कड़ी जोड़ी ए भाई देखे भगवान हाजर ताजा रा के आने ने है जो
1: हाँ सर
0: जो का कह नहीं भले आप जरा अश्वर बनावता रहे भले।
1: हाँ सर करतार सिंह आज जन्मदिन ऐसा भारत ने अंग्रेजी री दास मुक्त करावन वास्ते अमेरिका रे मायने गद्दर पार्टी री अध्यक्षता करी
0: ओ थापना करी भाई
1: हाँ
0: पर भारत वंशी हान उठे जान कह नहीं की भाई जिको का भारत देश रे क्या भाई हिमायती में काम करियो
1: करियो हो
0: तो करता।

0: अश्विन जी ने कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन है फूल चढ़ावा बड़ा
1: जना कृष्ण मूर्ति ए भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुशल नेता हा सा।
0: ओ ठीक ठीक है जी को कह रही राजकाज में भागीदारी करी।
1: हाँ सा
0: तो भाई आने कहो है
1: मनरेरा फूल चढ़ावा सा
0: कोटि कोटि नमन करा बड़ा।
1: राजेश रोशन ए संगीतकार और अभिनेता है।
0: अदाकारी है फनकारी है मौसीकारी है, है।
1: हाँ सा
0: तो भाई देखा कि सबकी बात है। मारो कौन है जी को मारो गीत लो हुने ये होती।
1: हाँ।
0: गीत लो मंठा है कब
1: ओढ़क लियो
0: ओढ़क लियो।
1: अच्छा
0: तो आरो ही है जो कह नहीं बाजू बजे लो तो आनी कोई नहीं भूल सके। हे भाई आने कह नहीं कोटि कोटि बधाई है।
1: हाँ सा
0: वाह भाई वाह के होनी हमें बड़ा।
1: के एस हेगड़े ए आज रे दिन फोत विया हा ए भारतीय लोकसभा रा अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय रा न्यायाधीश हा सा।
0: ओ ठीक ठीक है जी को क्या मोटा जल जा।
1: हाँ सा
0: आज पास राजकाज भागीदारी थी कोई चौका काम कर किया तो आने कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदिरे रा फूल चढ़ावा।
1: हाँ सा
0: बड़े
1: गुरु हनुमान आने हनुमान रे नाम री प्रसिद्धि मिली ही ए विजय पाल यादव भारत रे प्रख्यात कुश्ती रा जगह
0: पहलवान भाई।
1: हाँ अने पद्म श्री पुरस्कारों और द्रोणाचार्य पुरस्कारों सम्मानित करी होड़ा है।
0: तो देखे मोटा कहने के भाई आप रे कुछ खिलाड़ी हार खिलाड़ी ने खिलाड़ियों ने बड़े तैयार करिया।
1: हाँ
0: चौका काम कर किया तो आने कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदिर का फूल चढ़ावा बड़े।
1: मजरूह सुल्तानपुरी ए भारतीय उर्दू शायर हा और हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध गीतकार रूप रमाई ने भी खुद की पहचान।
0: ओहो मजरू साहब।
1: हाँ सा
0: ओ हूँ देखो भाई मिली हूँ और बढ़िया जग चावा छोका कहनी के अड़ा मीठा मीठा गीत लिखिया जी को कहनी के आज ही होना नहीं।
1: हाँ सा
0: तो जी हो रो जा
1: सही बात
0: समझिया।
1: हाँ
0: कैर कैर कैर तहजीब रा गीत लिखिया कई बात है हूँ आरो एक गीत सुनाऊ था ने आज।
1: हाँ
0: हूँ
1: सुनाओ सा
0: ठीक है।
1: हाँ सा

0: स्वतंत्रता सेनानी योग्य पत्रकार विद्वान और वक्ता हासा हाँ। तीन बार बॉम्बे रे मेयर चुनी जोड़ा हा
1: और सेवा करी भाई
0: हाँ।
1: चौकी सेवा करी तो दिन बाद है
0: हाँ सर।
1: और अने कोटी कोटी नमन है मंदिर रा फूल चलो
0: हाँ सर।
1: हमें गेल मेल बाँचो
0: हाँ सर।
1: उर्दू पढ़ुतर रियो कम
0: हाँ सर। धोरे कनली ढाणियों है गांव तापोसु विष्णा राम बलियान विदामी देवी सुनील पूजा सुरेश सुभाष श्याम सुंदर भानु समस्त बलियान परिवार
1: बलियान है भाई
0: हाँ
1: हरदान जी धनी जंगी तो तापू
0: तापू
1: तो राजी खुशी रामचार है नाने को भाई तावड़े हावल क्या नहीं बचाओ राखो
0: हाँ
1: सर।
0: गांव मेलाना बावड़ी जोधपुर ऐसा छेला राम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी मेघवाल
1: हाँ अनी जिनी बात है जाप दो राखो हावल रहो और ओल को समझ ही है तो देख दो बड़े।
0: गांव बुचेटी तहसील बावड़ी जोधपुर सु ऐसा धापू जीताराम प्रदीप भाटी पुलकित और नुनू सगलो भाटी परिवार
1: हाँ भाटी पो है जिको लिखियो तो यही है जो क्या नहीं भाई एक प्रेम चाहू प्रोग्राम हुने
0: हाँ सर।
1: तो यू हुनता रहो भले कोई और वो समझ में तो देता रहो भले।
0: गांव चंपा सर फड़ोदियों ऐसा प्रेम प्रजापत आदुराम राधा लाछा लीली संतोष कोमल तरुण कुमार प्रजापत
1: तो भाई देखे क्या नहीं धोरा धरती हूँ कागजी लिखियो
0: हाँ सर।
1: एक प्रेम अपन कागजी कहूँ भाई गेल मेल कर
0: लिखिया सर हाँ।
1: हाँ तो है जी को ये ड्रैगन प्रोग्राम होने तो यानी दिन बाद है बड़े।
0: बिल्लो का खींसर जिला नागौर सु ऐसा बाबूराम गोयल मंगलाराम विष्णाराम ऋतिक गुड्डी बेबी मोनिका निकिता संध्या गेचू और मुमे गोयल हाँ सर।
1: बिल्लो के होनी
0: हाँ
1: वाह भाई बढ़िया सो की बात है कोई और बात समझ दिया मैं बता दो खड़े।
0: अरणियाली बालोतरा ऐसा फरसा राम खत्री शारदा भाग्यश्री और मानविका खत्री
1: लिखी और बोल समझ के
0: हाँ सर आने अपना प्रोग्राम घनो दाय आवे है
1: दाय आवे तो बढ़िया
0: भले भले हमे एक दो आप बताओ के मैं बताऊं।
1: अरे है जी को बातों को नहीं आगे फटाफट बाकी कौन भाई है हम मार्गन तो काग दिया है जी को हूँ बता दू
0: हाँ सर बताओ।
1: देखो पावटे चरे कृष्ण राम प्रेम शंकर नैन्सी आनंदिया गंगा कृष्ण पांडे जैसले राजा राम बिश्नोई सांसल ताज मोहम्मद मोइनुद्दीन खान वर अली मुंशी का रेहान अली अमीर अली मलाला रिजवाना रोशना मस्ताना मग्गी रवीना अहमद खान तीर मीर बिलाल खान रेहान अली शेर खान और खालडे भर सिंह करता राम माचरा भैर राम रेखा राम अम्बेदर राम चेतन भूम सिंह माचरा और भाई देखे भोपाल के नू राजेश दिवराया घनश्याम सिंह चौधरी धर्मेंद्र छिपा श्याम लाल सोनी बल्लाराम ढाकान जीवन राम तांडी भले कौ है भाई देखे खलीफेरी बावड़ी खुदा बख्श खलीफा खुदा दाद बच्चू खां खलीफा रोशन अली और खुड़े चौंग हीरा लाल श्रीमाली जुगिया देवी सीमा खुशी विशाल मन्नत अनार है जी घराड़ा खोखरे मारवाड़ सोमदास वैष्णु विष्णुदास युवराज खुशवंत भोरदास अनार और भाई देखे घना ही है जो भाई साहब लिखे है
0: सारण नगर बाड़मेर ऐसा मेरा सारण हीरो सारण हितेश राज सारण और नवप्रीत सारण
1: वाह तो भांडू है जो दिनेश सोडा रुद्रांत भव्यान रमनदीप कार्तिका एयरफोर्स बिंदु कार्तिक हिमांशु विनोद मेघवाल निमल कोट सजिया देवी तोगाराम सोनी अलुम्बो कलुम्बो मतारी मगराज वर्मा बेबी वर्मा नारा हैंगी घराड़ा और आऊ भीकम चंद टाटिया मनोज सुरेश सक्षम भूमि धनी सपना नेहरा परी टाटिया चाटी चौधरी उत्तम चंद साजेड़ राणूलाल शांतिलाल कमला साजेड़ और बाउलियों बच्चू खान अमीन

मीडियम वेव 564.907 मीटर यानी ये 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिमाड़ी री गूंज, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

0: प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और समीर कुमार की युगल आवाज़ों में ये दो गाना। SH बिहारी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुने फिल्म भ्रष्टाचार का ये दो गाना, आवाज़ें सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: रे गा मा, तुम भी गाओ।

साधना सरगम और उदित नारायण की युगल आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनाड़ी का ये दो गाना, आनंद मिलन के संगीत और समीर के बोल थे। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। सब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तेरी मेहरबानियां का ये गीत, SH बिहारी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दिल है बेताब, इस फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गाना। रानी मलिक के बोल को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए कार्यक्रम के आखिर में सुने फिल्म नाराज का ये गीत। आवाज़ें कुमार सानू की और गीत के बोल लिखे हैं कतल सफाई ने और संगीत अनु मलिक का।

0: नाराज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। आइए सुने समाचार संध्या और रात 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ एट 9, जिसे हम दिल्ली के अंदर से रिले कर रहे हैं।
1: भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री

0: हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित, अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमरीका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमरीका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को

0: 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसीदेवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी

पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विथ द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President.

क्या राज खैर के गाय इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव वो 564.97 मीटर यानी 5 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं आज सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म आपकी कसम के इस गीत के साथ। आर डी बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल और आवाजें किशोर कुमार की।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी की युगल आवाज़ों में हैं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म चरस का ये तो गाना। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। श्रोता, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। किशोर कुमार की आवाज़ में आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म अमर प्रेम का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज़ों में ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत था। श्रोता, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने अमृत फिल्म से मनोहर उदास और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ों में ये गीत, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत बैरेलाल का संगीत।

0: अमृत फिल्म के इस दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: गौर भट्टाचार्य जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Raag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Raag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the Rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।
2: अभी आप सुन रहे थे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इसी समय रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके

और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

0: का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answers.